0: लाइफ। टॉक टू अतुल बिफोर यू टॉक टू पुलिस। अज्जी कॉन्टैक्ट करो अतुल जीनो ऑन 0400-234-235। दैट इज 0400-234-235।
1: कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
2: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
1: अरे वाह, इनका पता बताना।
2: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शो ग्राउंड, ऑफिस 5-1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। Call Arshad from Arshad Lawyers now on 0420-933-171. Website www.arshadlawyers.com. We pride ourselves in providing excellent service.

सो वेलकम बैक इट हैपेंस, सुन रहे हैं आप सताक्षी के साथ रेडियो प्रस्थानी 107.1 एम पर। जी हाँ, आपके ब्रेकफास्ट शो को इस वक्त आप मेरे साथ सुन रहे हैं। सो ब्रेकफास्ट शो का जो हमारा कॉन्सेप्ट है, हमारे इट हैपेंस का जो कॉन्सेप्ट है, वो आपको हेल्दी और फिट रखना है, जैसा कि आप जानते ही हैं। सो इसलिए बस आपको इस मॉर्निंग ये याद दिलाना है कि यार वॉक हो या फिर सेल्फ टॉक हो, दोनों के साथ जुड़िए जरूर। जी हाँ, अगर आप फिट रहना चाहते हैं तो सिर्फ वॉक ही इम्पोर्टेंट नहीं है, आपके अपने साथ जो सेल्फ टॉक है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत मायने रखती है। सो जरूर सेल्फ टॉक करते रहिए, क्योंकि जब आप खुद से बात करते हैं, खुद के लिए वक्त निकालते हैं और खुद से जुड़ते हैं, तो शायद अभी समझ पाते हैं कि आपको एक्चुअली क्या चाहिए। कई बार हमारी लाइफ में हमें लगता है कि चीजें बहुत बिगड़ी हुई हैं, बहुत मिसमैनेज हैं, लेकिन जब आप सेल्फ टॉक करते हैं या फिर आप खुद पर फोकस करते हैं या खुद के साथ थोड़ी देर बैठते हैं, तो आपको कई बार ये रियलाइज होता है कि यार जिंदगी में जो चीजें हम समझ रहे हैं कि बुरी हैं या सही नहीं है, वो एक्चुअली इतनी भी बुरी नहीं है। कई बार आपके रिलेशनशिप सुधर जाते हैं, कई बार आपकी लाइफ की प्रॉब्लम, आपके लाइफ के इश्यूज क्लियर हो जाते हैं, आपकी अपनी नीड्स क्लियर हो जाती है। सो सेल्फ टॉक जो है, सेल्फ चैट जो है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और जरूर कुछ देर है ना निकाल करके दिन में आपका वक्त, उसको जरूर उस पर ध्यान दीजिए। और मैं तो कहती हूँ कि मॉर्निंग में अगर आप खुद के साथ एक बढ़िया सी कॉफी एंजॉय कर पाए अकेले बैठ के अपने साथ, तो भाई इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। आपके पूरे दिन की प्लानिंग भी आप कर लेंगे और खुद के साथ थोड़ी गुफ्तगू भी हो जाएगी। एक और ट्रैक चलिए इसी बात पर सुनते हैं, और हमारे साथ भी सुनते रहिए इट हैपेंस आपके अपने रेडियो प्रस्थानी 107.1 एम पर।

0: सो इट हैपेंस को सुन रहे हैं आप सताक्षी के साथ रेडियो ब्रिस्वानी पर. सेल्फ ऑब्सेशन और सेल्फ लव, ये दोनों चीजें जो हैं ये बड़े सिमिलर लोगों ने बना दी हैं, लेकिन इन दोनों के बीच गजब का डिफरेंस है. अगर आप सेल्फिश होकर के खुद से प्यार करते हैं, जी हाँ, अगर आपको लगता है कि आप लोगों को तकलीफ पहुंचा के या लोगों को हर्ट करके आप सही कर रहे हैं, क्योंकि भाई अब आप सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, तो ये सेल्फ लव नहीं है, ये सेल्फ ऑब्सेशन है, जहां पर आप पूरी तरह से सेल्फिश हो जाते हैं कि आपको सिर्फ अपने बारे में सोचना है. बट सेल्फ लव बेसिकली बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है, और इसमें आप अपने बारे में सोचते हैं लेकिन दूसरों को हर्ट किए बिना. जी हाँ, अगर आप खुश रह सकते हैं किसी को हर्ट किए बिना, और आप दूसरों के साथ जुड़े रह सकते हैं अपने आप को हर्ट किए बिना, तो फिर आप वाकई सेल्फ लव की डेफिनेशन को समझ पाए हैं और इस कॉन्सेप्ट के साथ आप जी रहे हैं. सो यस, किसी को हर्ट नहीं करना है, ना किसी को, इनफैक्ट ना खुद को, बट हाँ, खुद से प्यार जरूर करना है. एक और ट्रैक सुनिए मेरे साथ एंड स्टे ट्यून्ड रेडियो प्रस्वानी, आप सुन रहे हैं इट हैपेंस.
1: पिछले 15 साल से फादर ऑफ गॉड फादर्स गफूर इस्माइल इंडिया से लापता है. सूत्रों के अनुसार किसी आइलैंड पे छुपे हुए हैं.
2: गफूर का आइलैंड,
3: शराब, पैसा,
4: वो सब कुछ जो एक विलन के पास होता है,
5: बैड मैन के पास होता है.
6: Good, Pushti.
4: Hey, beauty.
7: Oh,
8: ek cheez bhul gaye.
9: Item song.
10: Yeah.

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी एडवाइस है go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
1: थैंक्स अटनिया, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400.
2: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more, and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxlade, Breckenridge, Mogill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Mogill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.

वेलकम बैक इट हैपेंस में सताक्षी के साथ इस गाने के स्पार आप अपने ब्रेकफास्ट शो में एक बार फिर से हैं और मेरे साथ एंजॉय कर रहे हैं आपके मॉर्निंग शो इट हैपेंस को। इस मॉर्निंग शो में आपके साथ गाने तो बढ़िया प्ले हो ही रहे हैं, आप सुन ही रहे हैं, लेकिन हमारी और आपके मॉर्निंग की जो गुफ्तगू है ये भी बड़ी खास है, क्योंकि देखिये जिंदगी की वो बातें जो बहुत मोटिवेशनल होती हैं या जो जिंदगी में हम अपनी प्लानिंग के तौर पे करते हैं, हम आगे बढ़ने के लिए अपनी ग्रोथ के लिए करते हैं या फिर हम अपने गोल्स को सेट करने के लिए करते हैं, ये सारी बातें जो हैं ये हम बेसिकली उसी इंसान के साथ शेयर करते हैं जो हमें लाइफ में ऐसा लगता है कि हमारे लिए बहुत रिलायबल है, जिसके साथ हम पूरी तरह से विश्वास का रिश्ता शेयर करते हैं, है ना। क्योंकि हम भी आपसे कई बार कह चुके हैं कि भाई अपनी लाइफ के जो प्लान्स हैं वो सबके आगे डिस्क्लोज नहीं करने चाहिए, और यहाँ पर हम प्लान्स को डिस्क्लोज भी नहीं कर रहे हैं, हम सही तरीके से उन प्लान्स को एग्जीक्यूट करने की बात करते हैं, हम लाइफ को ठीक से कैसे जिए इस बारे में बात करते हैं। तो ये बातें डेफिनेटली हम उसके साथ दिल खोल के कर सकते हैं जो हमारी लाइफ में बहुत वैल्यू रखता है, और आपके साथ जब ये सारी बातें हम करते हैं तो डेफिनेटली हम ये बातें हैं, हमें ऐसा लगता है कि हमारा भी जो रिश्ता है वो आपके साथ और भी गहरा हो रहा है, हमारा भी जो रिश्ता है वो आपके साथ और ऊंचाइयों को छू रहा है, या हम अब धीरे धीरे एक ऐसे फ्रेंड सर्कल में आ चुके हैं जो दोस्ती का अटूट बंधन है। तो चलिए इस बंधन को थोड़ा और गहरा कीजिए मेरे साथ, स्टे ट्यून रेडियो ब्रिस्वानी और कहीं मत जाइएगा जी हाँ, क्योंकि ये जो हमारा और आपका साथ है इट हैपेंस पर ये इस गाने के उस पार भी बरकरार रहेगा। तो बने रहिए मेरे साथ और सुनते रहिए आपके मॉर्निंग शो को।

लाइफ में एक स्टेज ऐसी आती है कुछ उम्र के बाद, स्पेशली 40+ की जब एज में आप आते हैं, तो आप ये समझ पाते हैं कि अभी तक आपने लाइफ में सबके लिए जिया है, लेकिन आप उस स्टेज पे हैं जहां पर आपको लगता है कि अब आपको खुद के लिए जीना है। इस स्टेज में आप ये नहीं सोचते कि आप कैसे लग रहे हैं, इस स्टेज में मायने ये रखता है कि आप किस चीज में या कैसे कंफर्टेबल हैं, पर चाहे वो लोग हों चाहे पहनावा हो, आप वही प्रेफर करते हैं जिसमें आप कंफर्टेबल हो। दिखावा जो है वो आपकी जिंदगी से गायब हो जाता है। किन चीजों में किन लोगों के साथ आप बात करना चाहते हैं, किन लोगों के साथ आप बात करना नहीं चाहते, कब आपका मूड है बात करने का, आपकी प्रेफरेंस धीरे धीरे आप बनने लगते हैं। आप ये नहीं सोचते कि हमें कुछ ऐसा खाना है जो टेस्टी हो, आप ये सोचते हैं कि हमें ऐसे रहना है जो हेल्दी लाइफ स्टाइल हो, है ना। तो ये सारी चीजें जब लाइफ में धीरे धीरे बदलती हैं और आप लाइफ में खुद के लिए फिक्र करना, खुद के लिए ध्यान देना शुरू करते हैं, तो आप ऐसे लोगों से नेचुरली धीरे धीरे दूर होना शुरू हो जाते हैं जो आपकी लाइफ में टॉक्सिक लोग हैं, जो आपको लगता है कि आपका सरदर्द बन रहे हैं, आप उनसे खुद ही कट ऑफ होना शुरू हो जाते हैं। और यही लाइफ का सबसे मैच्योर डिसीजन होता है। इसी डिसीजन को अगर हम लाइफ में थोड़ा और पहले ले लें तो शायद हम इतने परेशान ना हों जिंदगी में जितने हम इस एज तक आते आते रहे हैं, और इस एज के बाद जो चीजें हमारी लाइफ से कम हो जाती हैं। सोचिए मेरी बात को, और मैं प्ले करती हूँ आपके लिए ये अगला ट्रैक। कहीं मत जाइएगा, मेरे साथ एंजॉय करते रहिए आपका ब्रेकफास्ट शो इट हैपेंस।

0: Hi, this is Amitabh Bachchan.
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
2: Hi guys, I'm Manmeet from the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
3: Hi, this is Salman Khan. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
4: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
5: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Alia.
6: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Brisbane से.
7: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Shahrukh Khan.
8: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Brisbane.

आपके ब्रेकफास्ट शो सताक्षी के साथ इट हैपेंस में आप हैं और जरूर ये सफर जो है ये आपकी जिंदगी में ग्रोथ और पॉजिटिविटी लेके आ रहा है। वैसे पॉजिटिविटी से याद आया दोस्तों कि लाइफ में नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी जब ये दोनों कॉन्सेप्ट होते हैं तो नेगेटिविटी हमें बहुत जल्दी फील होती है, पॉजिटिविटी फील होने में जरा वक्त लग जाता है। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज नेगेटिविटी जो है ना इसकी वाइब्स बहुत तेज

लगा है और आप जल्द से जल्द वहां से हट जाना चाहते हैं। और अगर आप एक पॉजिटिव इंसान हैं तो ये नेगेटिविटी जो है ये आपको और परेशान करती है, आपका सिर दर्द होने लगेगा, आपको आपको ऐसा लगेगा कि शरीर भारी हो रहा है, नींद आने लगेगी, बस लगता है कि कैसे भी करके इस एनर्जी से, इस माहौल से हम दूर हो जाएं। वहीं अगर आप किसी पॉजिटिव इंसान के साथ या पॉजिटिव वाइब्स वाले लोगों के साथ बैठते हैं तो आपको उनके साथ अच्छा लगता है, दिल करता है कि वक्त हो तो हम थोड़ी देर और उनके साथ गुजार लें। ठीक इसी तरह से जब आप खुद में नेगेटिव होते हैं तो वो नेगेटिविटी आपको और ज्यादा फील होती है, आपके अंदर और 10 तरह के थॉट्स आते हैं, और जब आप पॉजिटिव होते हैं तो आपको वो पॉजिटिविटी ज्यादा फील होती है और आपको अच्छा लगता है, खुद के साथ वो टाइम अच्छा लगता है, आप गाना गुनगुनाते हैं, आप सोचते हैं कि लो यार मूवी देख लें, ऐसे बहुत सारी चीजें है ना। सो बहुत जरूरी है कि लाइफ में पॉजिटिविटी को जो प्रेफरेंस है दी जाए, ऐसे लोगों का साथ किया जाए जो लाइफ में पॉजिटिव रहते हैं और नेगेटिविटी से जितना हो सके खुद को दूर रखा जाए। तो चलिए आपकी पॉजिटिव वाइब्स के नाम एंजॉय करते हैं ये अगला ट्रैक और इसके साथ बढ़ते हैं आगे। स्टे ट्यून्ड सताक्षी के साथ, इट हैपेंस रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM पर।

दोस्तों ये था आज सताक्षी के साथ टैपिंस पर एक और साथ। आज हमने फिर से कुछ जिंदगी को डिस्कस किया, कुछ अपनों की बातें की और कुछ जिंदगी की खूबसूरती को समझा। कल कुछ और बातों के साथ, गानों के साथ और आपके और हमारे रिश्ते की महक के साथ फिर से होगी इसी सफर इट हैपेंस में आपके साथ एक और मुलाकात। आज के सफर से आप दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: ਫਾਇਰ ਐਂਟਸ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰ ਐਂਟਸ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਰ ਐਂਟਸ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਕਿੱਟ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਫਾਇਰ ਐਂਟਸ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਜਾਂ ਫਾਇਰ ਐਂਟਸ QLD ਖੋਜੋ ਜਾਂ 132 ANT ਯਾਨੀ ਕਿ 132-268 ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੈ। ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਬਾਈ ਦਾ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ।
1: कंटेनर्स फॉर चेंज के माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धनराशि कमाएं। आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है। इसे हम बिन कॉइन कहते हैं। अपने बिन कॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है। बैंक में डालें ना कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें।
0: कंटेनर्स फॉर चेंज राहीं अपने खाली डब्बियां बोतलों तो कमाई करो। तुहाडे हर एक योग खाली कैन बोतल अते कार्टन उते 10 सेंट दा रिफंड प्राप्त हुंदा है। इसनू असी बिन कॉइन कहंदे हां। अपने बिन कॉइन नू बचा के रखो, खर्चो जां फिर जिस किसी संस्था जां विषय विच तुहाडा विश्वास है उहनां नू दान विच दे दिओ। तुहाडे नेड़े एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है। बैंक विच पाओ ना कि कूड़ेदान विच। अपना सब तो नजदीकी रिफंड पॉइंट लभण लई वेबसाइट उत्ते जाओ अते अज ही 10 सेंट कमाना शुरू करो।
2: सम नंबर्स कैरी वेट बियॉन्ड व्हाट यू सी। Q11700 द मास्टर नंबर ऑफ वैदिक ट्रेडिशन, अ हेरिटेज क्वींसलैंड प्लेट, फर्स्ट इश्यूड इन 1922, अ पीस ऑफ क्वींसलैंड हिस्ट्री विद फुल प्रोवेनेंस, ओन्ड आउटराइट, ट्रांसफर रेडी। For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
3: Na tere varga aashiq vekhya, na tere vargi aashiqi.
4: ARY Films and Salman Iqbal present Love This Song, starring Farhan Saeed and Mamia Shah Jafar, directed by Imran Malik. Love This Song in cinemas this Eid ul Adha, May 27th.
5: सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
6: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
5: अच्छा, वो क्या?
6: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
5: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
6: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

0: ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
1: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए, ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in, व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
2: भाई, मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
3: तो ओम्स ऑर्ग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
2: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
3: अरे, ओम्स ऑर्ग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
2: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
3: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
2: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
3: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448381360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470631801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई।
4: ओम्सॉग, केयरिंग विद डिग्निटी।

जी वेलकम बैक जी वेलकम बैक एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहिए रेडियो स्टेशन रेडियो बसवानी 101.1 AM ते जी आज संदेश अलग दिन बने हुए जी मैं हूं क्या सी ना इन गीतों तो पहला कि सिनेमा का साहित्य नाल गहरा नाता है बिना साहित्यक टच दे शानदार फिल्मा ते गाने बनाने की कल्पना नहीं की जा सकती तुसी भी ना कदे अजिहियां फिल्मां देखियां होणगियां जो किसी ना किसी कहानी नॉवल तो प्रेरित होण पर तुसी उन्हां दे बारे विच ना जानदे हो तां मैं सोचा कि क्यों ना उन्हां ब्लॉकबस्टर नॉवल ते बणियां फिल्मां बारे दसां एक एक करके जिवें तुहानूं पहलां कहा ना कि जिन्हां ने यादगार लम्हे बना दिते हुणे हुणे जे दी गल नहीं करनी जे तुसी सोचो कि मैं सिर्फ 2020 तों बाद वाले दी गल करूं 60s दे विच वी चलांगे आपां 16 दी वी गल करांगे 60s दे विच उस बारे भी गल करांगे ते गल ताजे ताजे भी करांगे हर लेवल दी गल करांगे पर पहला सुनदे आ एक गीत

0: आपकी शादी होने वाली है तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270355 पर या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स एंगेजमेंट्स रिन्यूअल ऑफ वाउस और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर हॉल या पार्क में बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270355। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270355 या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस कंप्लीट लीगल पेपर वर्क मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी रिमेम्बर द नेम परमानंद योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट।
1: बिल्कुल मजा नहीं आया।
2: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
1: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
2: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से। और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
1: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
2: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
3: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 04006644355 पर। याद रहे 04006444355 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
4: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

वेलकम बैक जी, वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहिए रेडियो स्टेशन रेडियो बिस्वानी 101.1 ते जी आर जे संदेश अलग दिनाल सी बने हुए। देखो जी, मैं क्या सी ना 60s दे विच आवांगे ता 60s दे विच ही जाने आ। साल 1965 दी गल हैगी है। 1965 दे विच ना रोमांटिक फिल्म आर के नारायण दे मशहूर नॉवल ते बनी एक मास्टरपीस हैगी है। फिल्म नू विजय आनंद ने डायरेक्ट कीता सी ते उन्हां दे भाई देवानंद ने इस विच राजू गाइड दा यादगार किरदार निभाया सी। फिल्म दी कहानी राजू ते रोजी, राजू यानी कि देवानंद ते रोजी यानी कि वहीदा रहमान दे इर्द गिर्द घूमती है, जिस विच एक टूर गाइड नू एक मैरिड डांसर दे नाल प्यार हो जाता है ते उन्हां दी जिंदगी पूरी तरह दे नाल बदल जाती है। इस विच एक दिलचस्प गल भी हुंदी है, उस दिलचस्प गल बारे मैं तुहानू जरूर दसना हैगा, पर पहला मैं सोच रही हैगी कि तुहानू एक गीत सुना दिंदी हां।

0: भी होगा, ग्रुप भी होगा और फीजी का फ्लेवर भी फुल ऑन होगा। ब्रिस्बेन तैयार हो जाओ। क्यूबॉल 2026 सॉकर टूर्नामेंट प्रेजेंटेड बाय क्वींसलैंड फीजी फुटबॉल एसोसिएशन। टूर्नामेंट होगा संडे 31 मई और थर्सडे 4 जून से संडे 7 जून तक एट अकाशिया रिज सॉकर क्लब, 174 मॉर्टिमर रोड, अकाशिया रिज 4110। ग्राउंड पे चलेगा फुल सॉकर कटेशन, ओपन्स, मास्टर्स एंड लेजेंड्स। हर मैच में एनर्जी, एक्साइटमेंट और क्राउड का शोर। और भाई खाने का सीन तो और भी डेंजरस है। फीजी स्टाइल बारबेक्यू, स्पाइसी डक करी, यम्मी पुलाव और ठंडी ठंडी फीजी आइस ब्लॉक। तो इन डेट्स पर घर पे मत बैठना, फैमिली फ्रेंड्स के साथ आ जाना क्यूबॉन्ग सॉकर टूर्नामेंट 2026 में। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें अब्दुल रहीम 0423-342-272 या फिर सेक्रेटरी रे अली 0413-868-240 और विजिट करो briswani.com के इवेंट सेक्शन में। क्यूबॉन्ग 2026 आपका इंतजार रहेगा।
1: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
2: तूने ओम्स और असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
1: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
2: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए, ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in, व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
3: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्टवेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन daily from 9 a.m. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.

बिजली का बिल देखकर हर महीने शौक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। ग्रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरनमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। ग्रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

जी अनु जी वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहे ते रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रसवानी 1.1 FM ते जी आर जी संदेश अलग दिनाल तुसी बने होए। देखो शरत चंद्र चट्टोपाध्याय दे नॉवल परिणीता दी भी गल करिए ना तो परिणीता ता ते उंज तक कई फिल्मां बनियां ने जिस विच साल 2025 विच आई फिल्म परिणीता काफी यादगार सी। नॉवल दे वाला ही नाम सी। एक खूबसूरत म्यूजिकल रोमांटिक मूवी है। फिल्म विच प्रदीप सरकार ने

आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438, 3630-5438 या मोबाइल 0415

0: 9526600415952660।
1: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाली शॉप से ले सकते हैं ना?
2: Yes baby, but no compromise with quality and health. हम जाएंगे सिर्फ MC's Indian and Island Food.
1: ऐसा क्या खास है वहाँ?
2: सब कुछ, quality spices, lentils, rice, flour और frozen सब्जी from Fiji and India. Brisbane के best Indian butcher supplying farm fresh goat, lamb, chicken and duck और fresh local produce भी रखते हैं. साथ ही kitchenware and disposable plates की large range किसी भी function के लिए.
1: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
2: MC's Indian and Island Food serving Brisbane since 1999. Open 7 days. Find us on Facebook or visit website mcsfoods.com.au. 1/268 Kingston Road, Slacks Creek, phone number 3804-3818. That's 3804-3818.
3: Only God can judge me. That right? Only God, baby. Nobody else.
4: They see friends.
5: Hey, yo, Sean.
6: ਕਦੀ ਨੱਕ ਤੱਕ ਮੇਰੇ

माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धनराशि कमाएं। आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है। इसे हम बिन कॉइन कहते हैं। अपने बिन कॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स और चेंज मौजूद है, बैंक में डालें ना कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें।

0: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
1: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। I actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: Go for the best, Vire. Atul Bhardwaj ji nu aaj hi contact karo. Ona de kol vast experience aa. Te law di intricacies nu handle karan ch vi o expert han. Criminal law, domestic violence, traffic drug offense vich 12 saal to vadh da rich experience. Te conveyance, family law, immigration laws vich vi Bhardwaj and Associates de lawyers da vast experience aa. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
1: Thanks a ton, Vire. I'm so relaxed to hear that.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: Koi achha sa lawyer suggest karo na. Aisa jo meri sari baat dhang se sune, samjhe, aur phir mere tarike se mujhe samjhaye.
3: Arshad Lawyers hai tumhari problem ka solution. कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
2: अरे वाह, इनका पता बताना।
3: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। Call Arshad from Arshad Lawyers now on 0420-933-171. Website www.arshadlawyers.com. We pride ourselves in providing excellent service.
0: Yaar Rahul, tere case ka kya hua?
1: Yaar, I'm so worried. I actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: Meri advice hai, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है। एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट।
1: थैंक्स अटनिया, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट।
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400.
4: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more, and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Morgill and

0: दिस इज अमिताभ बच्चन
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
2: हाय गाइस, आई एम मनमीत, वन ऑफ द मीत ब्रदर्स, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
3: हाय, दिस इज सलमान खान और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
4: हाय, दिस इज दीपिका पादुकोण और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
5: टू एवरीवन ट्यूनिंग इनटू रेडियो ब्रिसवानी, दिस इज आलिया।
6: हाय, मैं हूं तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी
7: पे। टू एवरीवन ट्यूनिंग इनटू रेडियो ब्रिसवानी, दिस इज शाहरुख खान।
8: हाय, दिस इज अजय देवगन और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।

पहचान हो, जीना आसान हो, जान पहचान हो, जीना आसान हो, दिल को चुराने वालों आंख न चुराओ, नाम तो बताओ, जान पहचान हो, जीना आसान हो।

बोलो ये ना बोलो तुम हो गए इशारे, सीधी सीधी चोट हुई दिल पे हमारे, सीधी सीधी चोट हुई दिल पे हमारे, सीधी सीधी चोट हुई दिल पे हमारे। जान पहचान हो जीना आसान हो, जान पहचान हो जीना आसान हो, दिल को चुराने वालों आंख न चुराओ, नाम तो बताओ। जान पहचान हो जीना आसान हो।

आसान हो। दिल को चुराने वालों आंख न चुराओ, नाम तो बताओ, जान पहचान हो, जीना आसान हो।

0: Maria, suco, suco!
1: Ai, ai, ai, करूं मैं क्या सुकू सुकू ai ai

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

0: दूं तुम्हें
1: हाँ
0: या चुप रहूं
1: ना,
0: दिल में मेरे आज क्या है
1: क्या है।

कैसे हो आप सब। सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। प्रोग्राम शुरू हो गया है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरशे निव्या के साथ। और सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, कैसे हो आप, कैसा फील कर रहे हो, हाउ आर यू फीलिंग टुडे। जी हाँ, अभी तो हफ्ते का सिर्फ एक दिन बीता है। अगर आप थका थका फील कर रहे हो तो ऐसे नहीं चलेगा। थका थका फील बिल्कुल नहीं करना है, प्रोडक्टिव बनना है, अच्छे से वो सारी की सारी प्लानिंग पे एग्जीक्यूशन। बड़े लोगों ने कहा है कि सिर्फ प्लानिंग से काम नहीं चलेगा बीड़ू, एग्जीक्यूशन करना पड़ेगा। आप कितना भी अच्छा ब्लूप्रिंट बना लो, आप कितनी भी अच्छी प्लानिंग कर लो, जब तक एग्जीक्यूशन नहीं होगा तब तक बात नहीं बनेगी। तो एग्जीक्यूशन कीजिए और मेहनत कीजिए। जी हाँ, मेहनत कीजिए लेकिन फन भी कीजिए। जी हाँ, यहाँ पर एक चीज मैं हमेशा कहती हूँ कि मेहनत करने के साथ साथ अपनी जिंदगी को जीना भी इम्पॉर्टेंट है। अपने गोल्स को अचीव करने के साथ साथ अपनी जिंदगी के हर पल को खूबसूरत बनाना भी जरूरी है, एंड दैट इज इम्पॉर्टेंट। चलिए इसी के साथ यहाँ पर अब जरा बात कर लेते हैं हमारे सबसे पहले इम्पॉर्टेंट रिचुअल, जो कि हेल्दी ब्रेथ एक्सरसाइज। तो डीप ब्रेथ एक्सरसाइज के साथ शुरुआत करते हैं। क्या बात है, अच्छा फील हो रहा है, काम फील हो रहा है, हेल्दी फील हो रहा है, हेल्दी फील हो रहा है। और यहाँ पर ये सब फील करते हुए अब जरा प्रोग्राम की शुरुआत कर ली जाए। आपको तो पता ही है प्रोग्राम की शुरुआत जो है वो जरूरी होती है, वो भी मजेदार। तो यहाँ पर बैड्स ऑफ बॉलीवुड से मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक मजेदार सा गाना, जो कि काफी पॉपुलर हुआ था कुछ वक्त पहले, लेकिन अभी भी हमें तो ये पसंद है। सो ऑफकोर्स वी आर गोना प्ले दैट। और ये है नेटफ्लिक्स की बहुत ही पसंदीदा सीरीज में से एक, लेकिन मैं आपको रेकमेंड नहीं करूंगी क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा कर्सिंग है, गालियां हैं और वो सब है। सो या आई वोंट रेकमेंड इट टू यू इन दैट वे, बट या अगर आपको उससे कुछ प्रॉब्लम नहीं है तो यू कैन वॉच इट।

जी हाँ दोस्तों, और इसी के साथ अब जरा चलते हैं सीधा मौसम की तरफ। मौसम की जानकारी लेना जरूरी है क्योंकि मौसम के हिसाब से हमारी सारी प्लानिंग और हमारी डिसाइड होते हैं प्रोग्राम्स कैसे रहेगा, कैसे क्या करना है, कहाँ क्या करना है और किस तरह से जाना है। जी हाँ, सबसे पहले मैक्सिमम टेम्परेचर 24 डिग्री सेल्सियस। जी हाँ, 24 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम टेम्परेचर। अभी की अगर बात की जाए तो 23 डिग्री सेल्सियस के करीब है। फील आपको हो रहा है 24.1 डिग्री सेल्सियस के करीब। वहीं रात के टेम्परेचर की बात की जाए तो 18 डिग्री सेल्सियस यानी कि 18 डिग्री सेल्सियस तक तापमान में आप गिरावट देखेंगे और चांसेस ऑफ रेन 80%। जी हाँ, जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा था कि बारिश होगी और बारिश जो है वो हो रही है। आप मुझे बताइए कि आपकी जगह पर कितनी बारिश हो रही है, कितनी ज्यादा, क्योंकि 6 बजे के बाद तो मैं अच्छी खासी बारिश जो है वो देख पा रही हूँ और भी ज्यादा बढ़ते हुए देख पा रही हूँ। और ये बारिश जो है वो कल भी आपका साथ नहीं छोड़ने वाली है। मैंने जैसे कहा था कि 5 से 10 mm बारिश आपको देखने को मिल सकती है और थर्सडे को आपको थंडरस्टॉर्म भी मिल सकता है देखने को। वेडनेसडे को भी ऑल्दो पहले थंडरस्टॉर्म प्रिडिक्ट किया गया था लेकिन अभी मुझे नहीं नजर आ रहा वो। और एयर क्वालिटी की अगर बात की जाए तो एकदम मजेदार है। जी हाँ, ये है ये है मौसम का हाल। और मौसम का हाल कह रहा है कि छातों के बिना, रेनकोट्स के बिना मत निकलिएगा। बारिश है तो ट्रैफिक होने के ज्यादा चांसेस हैं, तो ऐसी जगहों पर मत जाइएगा जहां अभी जाना जरूरी नहीं है। अगर बहुत ही जरूरी है तो थोड़ा रुक के जाइए और यहां पर ट्रैफिक की पूरी अपडेट लेकर निकलिएगा, नहीं तो आप फंस सकते हो। जी हाँ, यहां पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से, जो कि अगेन बहुत ही खूबसूरत है।

0: हनी ये तुम कहाँ ले जा रही हो, ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।
2: अर्न मनी फ्रॉम योर एम्प्टी ड्रिंक कंटेनर्स विद कंटेनर्स फॉर चेंज। Your MT eligible cans, bottles and cartons receive a 10 cents refund each. We call it bin coin. Save, spend or donate your bin coin to a cause you support. There's a Containers for Change near you. Bank it, don't bin it. Visit the website to find your nearest refund point and start trading for 10 cents today.
3: Fire ants, tuhade ilake vich maujood han. ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰ ਐਂਟਸ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਰ ਐਂਟਸ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਮੁਫਤ ਕਿੱਟ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਫਾਇਰ ਐਂਟਸ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਜਾਂ ਫਾਇਰ ਐਂਟਸ QLD ਖੋਜੋ ਜਾਂ 132 ANT ਯਾਨੀ ਕਿ 132-268 ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੈ। ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਬਾਈ ਦ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ।
2: कंटेनर्स फॉर चेंज के माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धनराशि कमाएं। आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन, बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है। इसे हम बिन कॉइन कहते हैं। अपने बिन कॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक में डालें ना कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें।
4: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM। शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निविया के साथ। दोस्तों आप सबसे पहले जरा बात कर लेते हैं आपकी फरमाइशों की, आपके पार्टिसिपेशन की और कैसे आप हमारे इस प्रोग्राम को और भी ज्यादा खास बनाते हो उसकी। जी हाँ, मतलब साफ है, आपकी फरमाइशें हमारे इस प्रोग्राम में चार चांद लगाती हैं, इसे खूबसूरत बनाती हैं, इसे खास बनाती हैं। जी हाँ, सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, जल्दी से फोन उठाइए, नंबर डायल कीजिए और वो नंबर है +9182888717101। आई रिपीट, +9182888717101। तो बस फिर जल्दी से फोन उठा लीजिए, नंबर डायल कर दीजिए, भेज दीजिए हमें अपनी फरमाइश। और जब तक आप भेज रहे हैं, हमारी तरफ से एक और मजेदार सा, वाइबी सा, जैजी सा गाना आप सबके लिए।

जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ एक वीडियो इंटरनेट पर बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। याना की स्टूडेंट, जब उसे डिप्लोमा मिल गया, अपनी डिग्री मिल गई, तो वो बड़े ही अच्छे से एकदम से अपनी कैप वैप उछाल कर, अपना केप वेब साइड कर डांस करना शुरू कर दिया। मतलब लोग और स्टूडेंट्स जो हैं वहां पर रेडी थे अपनी अपनी डिग्रीज, अपनी अपनी डिप्लोमाज लेने के लिए, लेकिन वहां पर वो लड़की को जब वो मिल गया, उसके बाद वो इतनी ज्यादा खुश हो गई कि उसने लिटरली सेलिब्रेटरी डांस करना शुरू कर दिया। और वो भी कोई नॉर्मल वाला नहीं, मतलब एक फुल फ्लेज्ड डांस। अब आप लोग बोलोगे कि ये तो अच्छी बात है ना निव्या, मतलब किसी को डिग्री मिल रही है, किसी को डिप्लोमा मिल रहा है। मतलब ऑफ कोर्स उन्होंने अपनी लाइफ का एक बहुत ही बड़ा जो है वो स्टेप जो है वो पार कर लिया है, एक बहुत बड़ा बेंचमार्क जो है वो पार कर लिया है। नहीं नहीं नहीं नहीं, नहीं। पॉइंट ये नहीं है कि उन्होंने बेंचमार्क पार कर लिया, पॉइंट ये है कि जिस हिसाब से वो खुश थी, उस हिसाब से ये लग रहा था कि उसने पेपर के बस पिछले दिन पढ़ाई की थी, जस्ट लाइक मेनी अदर स्टूडेंट। और पॉइंट ये भी है कि जिस हिसाब से वो डांस कर रही थी और जितनी खुश वो थी, उससे ये भी लग रहा था कि उन्हें पास होने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन वो हो गई और उसके बाद उनको डिग्री मिल गई, डिप्लोमा मिल गया, और फिर उसके बाद वो इतनी ज्यादा खुश थी कि ओ माई गॉड, आई गॉट इट, आई गॉट इट। आप लोग बोलोगे कि निवेश शर्मा, पर तुमने ये अज्यूम की क्यों किया कि उसने सिर्फ रात के पिछले दिन पढ़ाई की थी या फिर उसे पास होने की उम्मीद नहीं थी इसलिए वो डांस कर रही थी? वेल वेल वेल, इसके पीछे एक बहुत ही बड़ा रीजन है। कभी भी आपने एलीट स्टूडेंट्स को देखा है, जब भी उनको डिग्री मिलती है, जब भी उनको डिप्लोमा मिलता है, या जब भी उनके मार्क्स आते हैं, जब भी उनका रिजल्ट आता है, उन्होंने अपने लिए इतनी बड़ी बड़े जो है वो बेंचमार्क सेट किए होते, बड़े बड़े गोल सेट किए होते हैं कि उनको लगता है उन्होंने वो अचीव ही नहीं किए। मतलब ये प्रॉब्लम है जो एलीट स्टूडेंट्स होते हैं ना, जो बहुत ही नर्डी स्टूडेंट्स होते हैं, जिनको लगता है कि ओके यू नो व्हाट, आई एम गोना डू दिस, आई एम गोना डू दैट। मतलब मार्स पे तो सबसे पहले मैं ही जाऊंगा, मतलब चांद पे तो घर सबसे पहले मैं ही बनाऊंगा। आई मीन ये थोड़ा मेटाफोरिकली मैं कह रही हूं, बट द थिंग इज कि जो एलीट स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो कभी भी खुश नहीं होते अपने रिजल्ट से। मैंने तो हमेशा ऐसा ही देखा है। तो यहां पर अगर ये लड़की इतना अच्छा डांस कर रही है, तो ये एलीट स्टूडेंट तो बिल्कुल नहीं है, ये वही वाली कैटेगरी में है जो कि पिछले दिन करते हैं पढ़ाई, फिर उसके बाद जब नंबर आ जाते हैं, देन दे आर लाइक ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, मैंने तो सोचा था मैं पास भी नहीं होने वाली हूँ, ये क्या हो गया, मुझे डिग्री मिल गई, ये आई एम गोना डांस। या सो शी कांट बी एलीट स्टूडेंट, आई एम वेरी वेरी श्योर। शी कैन ओनली बी वो वाला स्टूडेंट जिन्होंने बस थोड़ी सी पढ़ाई की होती है, या फिर पढ़ाई की भी नहीं होती है, और जिनको पास होने की उम्मीद भी नहीं होती है। अब आपको समझ आया उसके पीछे की साइकोलॉजी, क्यों मैंने कहा कि वो कौन सी टाइप हो सकती है? यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

0: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
1: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। I actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: Go for the best, Vire. Atul Bhardwaj ji nu ajji contact karo. Ona de kol vast experience a. Te law di entry cases nu handle karan ch vi o expert han. Criminal law, domestic violence, traffic drug offense vich 12 saal to vadh da rich experience. Te conveyance, family law, immigration laws vich vi Bhardwaj and Associates de lawyers da vast experience a. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
1: Thanks a ton, Vire. I'm so relaxed to hear that.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: Anuj, koi achha sa lawyer suggest karo na. Aisa jo meri sari baat dhang se sune, samjhe, और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
3: अरशाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो, जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
2: अरे वाह, इनका पता बताना।
3: अरशाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अरशाद फ्रॉम अरशाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com. We pride ourselves in providing excellent service.
0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार, I'm so worried. I actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी advice है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का vast experience है और law की entry cases को handle करने में उनकी expertise है. Criminal law, domestic offense, traffic drug offense में 12 साल से ज्यादा का rich experience. और तो और conveyance, family law, immigration laws में भी भारद्वाज and associates के lawyers का vast experience है. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
1: Thanks, Atanya. I'm so relaxed to hear that.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
4: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate. First issued in 1922. A piece of Queensland history with full provenance. Owned outright. Transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are. Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
5: या दोस्तों, इसी के साथ आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM. शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निव्या के साथ. दोस्तों, वहीं 43-year-old लाइका इंग ने बना दी है हिस्ट्री, क्योंकि वो बन गई हैं पहली एस्ट्रोनॉट जो कि हांगकांग से स्पेस में ट्रेवल करने वाली हैं. जी हाँ, सो आपको मैं बता दूं कि चाइना के पास अपना स्पेस स्टेशन है. जी हाँ, एक इंटरनेशनल स्टेशन है जो कि पूरी दुनिया के जितने भी एस्ट्रोनॉट्स हैं वो वहां जाते हैं बाय, फिर चाहे वो यूरोप के एस्ट्रोनॉट्स हो, फिर चाहे वो अमेरिका के एस्ट्रोनॉट्स हो, फिर चाहे वो रशिया के एस्ट्रोनॉट्स हो, सब उसी को यूज करते हैं. लेकिन चाइना का अपना स्पेस स्टेशन है. जी हाँ, अपना एयरपोर्ट काइंड ऑफ सिचुएशन, जो कि लिटरली वहां जो भी रॉकेट और रिसर्च के लिए स्पेस में जाते हैं चाइनीज एस्ट्रोनॉट्स, वो वहां पर जाकर रुकते हैं, वहां पर जाकर रिसर्च करते हैं, और वहां पर बड़ी ब्रेक थ्रू रिसर्च वो करते हुए नजर आए हैं. उन्होंने कुछ दिन पहले बताया था कि कैसे ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ेगी शायद, क्योंकि चाइनीज एस्ट्रोनॉट्स ने कुछ ऐसा रिसर्च कर लिया है. मतलब जो अर्थ से ऑक्सीजन लेकर जाने की जरूरत पड़ती है अपने आप जिंदा रखने के लिए, वो जरूरत नहीं पड़ेगी. लेकिन अब फिर से चाइनीज एस्ट्रोनॉट्स जो हैं वो सुर्खियों में बने हुए हैं, क्योंकि चाइना के एस्ट्रोनॉट्स के साथ साथ हांगकांग के भी एस्ट्रोनॉट जो कि 43 वर्षीय हैं, वो पहुंचे हैं चाइना के शेंजू 23 स्पेसक्राफ्ट के जरिए, और चाइना ने इसे लॉन्च किया है शेंजू 23 मिशन को संडे को. जी हाँ, 24 मई को इसे लॉन्च किया गया. और ये जो तियांगोंग स्पेस स्टेशन है, जी हाँ, जो स्पेस स्टेशन है चाइना का, उसका नाम है त्यांगोंग. वहां पर ये जाएंगे. 3 एस्ट्रोनॉट्स गए हैं और वहां पर वो रिसर्च करेंगे और फिर रिसर्च करने के बाद जो है वो वापस आएंगे। आपको मैं बता दूं कि ये लॉन्च जो है वो किया गया जिक्वन सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से, जो कि नॉर्थ वेस्ट में है चाइना के। जी हाँ, सो एक्टिविटी काफी चल रही है क्योंकि एलन मस्क ने भी अभी कुछ दिन पहले कुछ ऐसा ही किया था, उन्होंने भी कुछ भेजा था स्पेस में और उसकी वीडियो उन्होंने जारी की थी और यहां पर चाइना भी लगा हुआ है। आपको एक और बात बताती हूँ, सो चाइना और अमेरिका में एक और दौड़ जो है, एक और रेस जो है वो लगी हुई है कि कौन सबसे पहले मून में कॉलोनाइजेशन शुरू करेगा। जी हाँ, आपने सही सुना। आप लोग बोलोगे कि इनको धरती पे चैन नहीं आ रही कि अब इनको मून पे भी कॉलोनाइजेशन शुरू करना है। या दैट्स ट्रू, और इसकी रेस में है चाइना और अमेरिका। मतलब चाइना अमेरिका एक दूसरे से आगे बढ़ने में है, पर जिस हिसाब से लग रहा है मुझे लगता है चाइना बाजी मार जाएगा क्योंकि उनके स्पेस क्राफ्ट अच्छी तरह से ऊपर पहुंच जाते हैं, देरी नहीं करते। नॉट लाइक नासा, जिनके स्पेस क्राफ्ट लिटरली डिले डिले डिले के बाद जो है वहां पर पहुंचते हैं। और अभी भी वो मून लैंडिंग नहीं की थी उन्होंने जब वो थोड़े दिन पहले गए थे, कुछ महीने पहले, जो आपको सबसे बड़ा मिशन जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, उन्होंने रिवॉल्व किया था मून के इर्द गिर्द, वो घूमे थे, उस तरफ घूमे थे जहां कोई नहीं गया था, लेकिन मून लैंडिंग तब भी नहीं हुई थी। जी हाँ, और ऐसे में क्या होगा? वेल, मुझे लगता है चाइना बाजी मार जाएगा, लेकिन हांगकांग के लिए एक बड़ी बात है क्योंकि वहां के एस्ट्रोनॉट पहले एस्ट्रोनॉट बन चुके हैं जो कि पहुंचे हैं स्पेस में। जी हाँ, यहां पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ जरा बात करते हैं एक और बहुत ही विचित्र किस्से के बारे में जो कि भारत से सामने आया है, इंडिया से आया है। सो इंडिया में उत्तर प्रदेश में गोट मतलब जो बकरियां हैं उनको हीट वेव इतनी ज्यादा परेशान कर रही है कि उनको आईवी लगानी ड्रिप लगानी पड़ गई। जी हाँ, आप लोग बोलोगे कि हैं इतना ज्यादा खतरनाक हाल है। वेल आपको क्या ही बताया जाए। सो इस वक्त जो सबसे गर्म सिटीज हैं पूरी अर्थ पे वो सारी की सारी एक ही लाइन में इंडिया में है। जी हाँ, मार्को रूबियो जो कि फॉरेन मिनिस्टर हैं अमेरिका के, अभी ताजे ही फॉरेन मिनिस्टर बने हुए हैं, वो कल वहां पर पहुंचे थे और वो कल कह रहे थे, इतना मैं कहना चाहूंगा कि दिस इज वे टू हॉट। जी हाँ, बहुत ही ज्यादा गर्मी है। वेल ऑफकोर्स बहुत ज्यादा गर्मी है, आपके जो हरकतें हैं उसकी वजह से दिमाग गर्म हो जाता है और कुछ आधा यहाँ पर गर्मी से हो जाता है। सो या आई होप वो लोग जो है वो किसी नतीजे पर पहुंचे ट्रेड के मामले में। बट द थिंग इज कि यहां पर हाईलाइट ये है कि इतनी ज्यादा गर्मी हो गई है कि बकरियां भी बेचारी बेहोश होने को हो गई हैं। जी हाँ, आप लोग बोलोगे कि ये तो खतरनाक बात है। जी हाँ, सो ये इंडिया से बहुत खबर आ रही है कि बहुत सारी जितनी भी सिटीज हैं, फिर चाहे वो दिल्ली है या नॉर्थ की जितनी भी सिटीज हैं, राजस्थान की जितनी भी सिटीज हैं, अब राजस्थान में तो गर्मी होती है लेकिन और भी जितनी सिटीज है लाइक उत्तर प्रदेश, बिहार और आजू बाजू की सिटीज, वो सब की सब बहुत ज्यादा परेशान है गर्मी से। कहीं गर्मी बहुत ज्यादा परेशान कर रही है बर्फ, आप खुद ही सोचिए गर्मी जो है वो हालत खराब किए हुए कुछ जगहों पर। वहीं कश्मीर में 25 मई को बर्फ गिर रही थी। या आपने सही सुना, कश्मीर में 25 मई को बर्फ गिर रही थी। मतलब आप लोग बोलोगे कि ये मौसम इतना कंफ्यूजिंग क्यों है। वेल मौसम तो लड़कियों से ज्यादा कंफ्यूजिंग हो गया, इतना मैं आपको बता सकती हूँ। लेकिन बकरियों को ड्रिप लगाने वाला मामला बहुत ही ज्यादा फनी है। लेकिन वो बकरियां भी ऐसे देख रही है, ओ माई गॉड गर्मी है गर्मी है गर्मी है, एंड डन लुढ़क गई। जी हाँ, उसके बाद डॉक्टर्स को बुलाया जा रहा है कि अरे ठीक करो इनको, ठीक करो, क्योंकि आपको पता है ये दिन कौन सा आ रहा है उसके बाद। इफ यू नो यू नो। जी हाँ, इसके बाद यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

0: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more, and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.
1: Hi, this is Amitabh Bachchan.
2: And aap sun rahe hain Radio Briswani.
3: Hi guys, I'm Manmeet, one of the Meet Brothers. And aap sun rahe hain Radio Briswani.
4: Hi, this is Salman Khan.
5: And aap sun rahe hain Radio Briswani.
6: Hi, this is Deepika Padukone. And aap sun rahe hain Radio Briswani.
7: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Alia.
8: Hi, main hoon Tulsi Kumar aur aap mujhe sun rahe hain Radio Briswani pe.
9: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Shahrukh Khan.
10: Hi, this is Ajay Devgan aur aap sun rahe hain Radio Briswani.
11: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है. सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे.
12: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है. मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का.
11: अच्छा, वो क्या?
12: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में.
11: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा.
12: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी. डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें.
13: कंटेनर्स फॉर चेंज राही अपने खाली डब्बिया बोतलों तो कमाई करो. तुहाडे हर एक योग खाली कैन बोतल अते कार्टन उते 10 सेंट दा रिफंड प्राप्त हुंदा है. इस नूं असी बिन कॉइन कहंदे हां. अपने बिन कॉइन नूं बचा के रखो, खर्चो जां फिर जिस किसी संस्था जां विषय विच तुहाडा विश्वास है उन्हां नूं दान विच दे दिओ. तुहाडे नेड़े एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है. बैंक विच पाओ, ना के कूड़ेदान विच. अपना सब तो नजदीकी रिफंड पॉइंट लभण लई वैबसाइट उते जाओ अते अज ही 10 सेंट कमाउणा शुरू करो.
11: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं. अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता. कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
14: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ. फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं.
11: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड.
14: बिल्कुल. ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम, इंडिया. ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स. अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए. ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG. वेबसाइट omsorg.co.in. व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360. ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर.
15: भाई, मम्मी पापा की तबीयत की बहुत.
16: जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM. शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निव्या के साथ. तो दोस्तों, बहुत कुछ चल रहा है इस दुनिया में, और आपको जैसे मैंने बताया कि कहीं इंसानों के साथ साथ बकरियां भी फेंट हो रही हैं, कहीं पर लिटरली लोग स्पेस में जा रहे हैं, और कहीं पे लोग अपनी ग्रेजुएशन पे इतना ज्यादा खतरनाक डांस कर रहे हैं कि सामने वाले को लग रहा है कि पास होने की कुछ ज्यादा ही खुशी हो गई है. अब हम आपको बताते हैं कि किस चीज से आपको सबसे अच्छा फील हो सकता है. जी हाँ, ये मैंने नहीं कहा है, ये कहा गया है अगेन रिसर्च के द्वारा. जी हाँ, रिसर्च के द्वारा कहा गया है और स्टडीज में प्रूव हुआ है कि ट्रैवलिंग बूस्ट करती है आपकी हेल्थ एंड आपकी एजिंग प्रोसेस को स्लो करती है. नाउ आई सेड व्हाट आई सेड. मतलब यहां पर कहा गया है और स्टडीज में कहा गया है कि ये सिर्फ आपको डोमिनेट नहीं करती, आपका सिर्फ स्ट्रेस नहीं खत्म करती, आपको अच्छा अच्छा फील नहीं करवाती, बल्कि आपके एजिंग प्रोसेस को, आपके इम्यून सिस्टम को अच्छा करती है, आपके सेल्स को नया करती है, आपके सेल्स को बेहतर बनाती है। जी हाँ, और ऐसे में आपका एजिंग प्रोसेस जो है वो भी स्लो डाउन हो जाता है। अब मुझे समझ आया कि जो लोग मेरे सर्कल में बहुत ज्यादा घूमते हैं वो मुझे ऐसा क्यों लगता है कि रेटिनॉल शॉट्स ले रहे हैं। वेल, रेटिनॉल शॉट्स नहीं ले रहे, टर्न्स आउट वो घूम रहे हैं, इसलिए वो ज्यादा यंग दिख रहे हैं। मैं तो बोलने वाली हूँ अपनी मम्मी को जाके कि मम्मी मैं कर रही हूँ अपना बैग पैक और मैं जा रही हूँ घूमने, और जब वो बोलेंगी कि वाह वाह वाह वाह कहाँ जा रही हो, कहाँ को निकली सवारी, देन आई विल बी लाइक आई वॉन्ट टू लुक यंग, आई वॉन्ट टू बी यंग एज लॉन्ग एज आई कैन, और मैं यंग रहना चाहती हूँ हमेशा। एंड देन शी विल बी लाइक ओके, तो यंगनेस और बाहर घूमने से क्या मतलब है और क्या नाता है उन दोनों चीजों का। तो मैं बोल दूंगी कि स्टडीज ने प्रूव कर दिया है मम्मी, स्टडीज ने, मैंने नहीं कहा, स्टडीज ने कहा है कि घूमना फिरना जरूरी है अगर आप यंग यंग रहना चाहते हैं तो। या मुझे लग रहा है कि ये बात में तो जरूर दम है। लोग अपने आप को यंग रखने के लिए क्या कुछ नहीं करते, टर्न्स आउट आपको सिर्फ घूमना है और घूमने से भी आप यंग फील करोगे और यंग दिखोगे। आई थिंक दैट इज अ गुड वे टू डू इट, लाइक लिटरली अपने आप को फिलर्स लगाना, अपने आप को बोटोक्स कराना और पता नहीं क्या क्या कराना, उससे तो अच्छा है कि घूमो, आपका साइट सीइंग भी हो जाएगी, एडवेंचर्स भी हो जाएंगे और आप यंग भी दिखोगे। आई थिंक दिस इज द बेटर आइडिया। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट, जरूर मुझे बताइएगा। यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ अब जरा चलते हैं सीधा खबरों की दुनिया की तरफ। क्या हो रहा है खबरों की दुनिया में, पॉलिटिकल वर्ल्ड में, वॉर फ्रंट पे, हर चीज के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान से क्या कहा चीन ने। जी हाँ, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ चीन यात्रा पर है। इस दौरान पाकिस्तान और चीन ने मंगलवार को एक संयुक्त बयान जारी किया है। पाकिस्तान ने कहा कि वो अपने देश में चीन के लोगों, प्रोजेक्ट और संस्थानों की सुरक्षा के लिए खास कदम उठाएगा। चीन ने कहा कि वह पाकिस्तान की आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई का समर्थन करेगा। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की ओर से जारी साझा बयान में कहा गया कि पाकिस्तान ने चीन को जम्मू कश्मीर की ताजा स्थिति बताई, जिस पर चीन ने कहा कि वह विवाद पुराना है और इसे संयुक्त राष्ट्र चार्टर, सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों और द्विपक्षीय समझौतों के अनुसार शांतिपूर्ण तरीके से हल किया जाना चाहिए। इसमें लिखा है कि दोनों देशों ने संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय कानून पर आधारित व्यवस्था को बचाने का संकल्प लिया है। इसके अलावा दोनों देशों ने सीमा पर पानी के संसाधनों पर सहयोग करने की इच्छा जताई। चीन ने पाकिस्तान को शंघाई सहयोग संगठन का अगला अध्यक्ष बनने में भी समर्थन दिया है। मध्य पूर्व में शांति प्रयासों पर भी दोनों देशों ने सहमति जताई। पाकिस्तान ने राष्ट्रपति शी जिनपिंग के सुझावों का समर्थन किया और चीन ने अमेरिका ईरान के बीच अस्थायी युद्ध विराम कराने में पाकिस्तान की कोशिशों की सराहना भी की।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे उमसॉग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई।
2: ओमसॉग, केयरिंग विद डिग्निटी।
3: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर, या फिर उनसे मिलिए Level 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com पर। For best service, complete legal paperwork, marriage certificate and a memorable marriage ceremony. Remember the name, Parmanand, your professional and friendly civil marriage celebrant since 2003.
4: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
5: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
4: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
5: किस दुनिया में हो भाई? क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड पीवा देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% पीवा क्रीम से, 99.9% पीवा मिल्क फैट से। और तो और, हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
4: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ, मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
5: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
6: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 04006644355 पर, याद रहे 04006444355 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
7: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
8: जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निव्या के साथ। और दोस्तों इसी के साथ अब जरा चलते हैं अगेन खबरों की तरफ। ईरान पर नए हमलों के बाद अमेरिकी विदेश मंत्री रूबियो ने समझौते को लेकर क्या कहा? अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने मंगलवार को कहा कि ईरान के साथ समझौता अभी भी संभव है। ये बयान अमेरिका के दक्षिण ईरानी में किए गए नए हमले के बाद आया है। दरअसल अमेरिकी सेना ने बताया था कि ईरानी मिसाइल ठिकानों और उनके जहाजों को निशाना बनाया गया, जो समुद्र में बारूदी सुरंगें बिछाने की कोशिश कर रहे थे। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने एक बयान में कहा कि यह हमला आत्मरक्षा में किए गए और उनका मकसद ईरानी बलों से सैनिकों को होने वाले खतरे से बचाना था। इन हमलों के बावजूद विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने समझौते की संभावना को खारिज नहीं किया है। उन्होंने ये भी कहा कि कतर में बातचीत हुई है, हमें देखना होगा कि आगे कोई प्रगति होती है या नहीं। मुझे लगता है कि ज्यादा समय समझौते के दस्तावेजों में इस्तेमाल किए गए शब्दों और भाषा को समझने पर लगेगा, इसलिए हम इसमें कुछ दिन लगने वाले हैं। जी हाँ, इसी के साथ यहां पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

जी हाँ दोस्तों, और इसी के साथ अब जरा बात करते हैं कनाडा की और भारत के बारे में और भारतीय पीएम के बारे में। उन्होंने क्या कहा? कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कॉनी ने कहा है कि उनकी भारत के साथ फ्री ट्रेड डील पर बातचीत चल रही है। मार्क कॉनी का मानना है कि भारत के साथ ये डील होने पर कनाडा के लिए एक बड़ा बाजार खुलेगा जो वहां के कारोबार के लिए फायदेमंद होगा। मार्क कॉनी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि हम भारत के साथ फ्री ट्रेड डील पर बात कर रहे हैं, ये कनाडा के कामगारों और कारोबार के लिए बड़ा बदलाव होगा, ये बहुत बड़ा नया बाजार खुलेगा। उन्होंने आगे लिखा कि हम तेजी से काम कर रहे हैं, मैंने मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात की ताकि अब तक की प्रगति देख सकें और आगे दोनों देशों के लिए ऊर्जा, कृषि, खाद्य, टेक्नोलॉजी और शिक्षा में नए मौके तलाश सके। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल, जो कि भारत के केंद्रीय वाणिज्य मंत्री हैं, उनके 3 दिवसीय दौरे पर हैं कनाडा में, और इस दौरान भारत और कनाडा ने साल 2026 के अंत में एक व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता पूरा करने और वर्ष 2030 तक आपसी व्यापार को 3 गुना बढ़ाने का लक्ष्य भी तय किया है।

जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ अब जरा बात करते हैं मिस्टर ट्रंप की। डोनाल्ड ट्रंप बोले ये काम ईरान के साथ मिलकर करेंगे, क्या लड़ाई? वेल नहीं, आई डोंट नो। यहाँ पर जरा देख लेते हैं, सुन लेते हैं, बात कर लेते हैं और फिर उनको रोस्ट भी कर लेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो ईरान में मौजूद एनरिच्ड यूरेनियम को नष्ट करना चाहते हैं। ट्रंप का यह बयान उससे अलग है जिसमें उन्होंने ईरान के एनरिच्ड यूरेनियम को अमेरिका को सौंपने की बात कही थी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा कि एनरिच्ड यूरेनियम तुरंत अमेरिका को सौंपा जाना जाएगा ताकि उसे वहां से ले जाकर नष्ट किया जा सके। ये भी बेहतर होगा कि ईरान के साथ मिलकर इसे ऐसी जगह पर नष्ट किया जाए जहां एटॉमिक एनर्जी कमीशन या उसके बराबर की कोई संस्था इस घटना की गवाह बने। बीबीसी फारसी के मुताबिक एक्सियोस के रिपोर्ट ब्राक राविद का कहना है कि ट्रंप का यह बयान दिखाता है कि अमेरिका अपनी पहले की मांग से पीछे हट रहा है और अब ईरान की बताई हुई शर्तों के करीब जा रहा है। गौरतलब है कि इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी कुछ दिन पहले कहा था कि जब तक ईरान का एनरिच्ड यूरेनियम भंडार निकाला नहीं जाता तब तक युद्ध को खत्म नहीं माना जा सकता। अब यहां पर एक बात तो पक्की है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो जो इंसान डूबने वाला होता है ना, वो पूरे हाथ पैर मारने की कोशिश कर रहा है। अभी वहां पर इलेक्शन जो है वो आने वाले हैं और वहां पर उसमें उनकी हार जो है वो सुनिश्चित हो गई। आपको ये भी बता दूं कि ट्रंप जितने पॉपुलर पहले थे उतने अब नहीं है। इनफैक्ट जो लोग उनसे कभी थोड़ा बहुत प्यार करते भी थे अब वो भी गाली दे रहे हैं। जी हाँ, ईरान ने उनकी हेकड़ी निकाल के रख दी है। जी हाँ, ईरान जिस पर उन्होंने ऐसे ही हमला कर दिया मजे मजे में कि उनको लगा अरे क्या कर लेगा ईरान, क्या बाल बांका कर लेगा। मैंने ईरान ने बोला कि बाल तो मैं तुम्हारा बांका करूंगा, लिटरली तुम्हारा बाल बांका करूंगा। गेस व्हाट, अभी थोड़े दिन पहले मैंने आपको बताया था कि बांग्लादेश में एक भैंस है, एक बुफेलो है जो कि डोनाल्ड ट्रंप की तरह दिखती है। ये मैं नहीं कह रही, ये वहां के लोग कह रहे हैं और उसकी वीडियो और तस्वीर अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा हाँ हेयर लाइन भी डोनाल्ड ट्रंप जैसी ही है। तो बांग्लादेश की उस भैंस, एल्बिनो भैंस की वीडियो शेयर की है ऑफकोर्स ईरानी दूतावास ने और वहां पर वो लिखते हैं कि यू नो व्हाट आई फील बैड फॉर दैट बफेलो, कि उसका उसको लिटरली कंपेयर किया जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप के साथ। मतलब वो कह रहे थे कि मुझे उस भैंस के लिए बुरा लग रहा है जिसको ऐसा कुछ झेलना पड़ रहा है, मतलब उसको ऐसा कुछ सुनना पड़ रहा है कि उसका कंपैरिजन डोनाल्ड ट्रंप की तरह हो रहा है, डोनाल्ड ट्रंप की तरह वो दिखती है। बस फिर क्या था, यहां पर वो मतलब एकदम चिंगारी लगाने में तो सबसे ज्यादा आगे। ईरान भी इधर उधर से पता नहीं कहां कहां से, एंड गेस व्हाट, ईरान के जितने भी दूतावास है पूरे के पूरे वर्ल्ड में वो थोड़े ना थोड़े दिन बाद कुछ ना कुछ ऐसा खतरनाक तो करते रहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप को से जो है जैसी दिखने वाली भैंस को उन्होंने बोला कि बुरा फील हो रहा है उस भैंस के लिए, कि कंपैरिजन हो रहा है, मतलब लिटरली कंपैरिजन हो रहा है डोनाल्ड ट्रंप से। अब मैं तो इतना ही कहूंगी कि डोनाल्ड ट्रंप जैसी वो भैंस दिखती है या नहीं दिखती है ये आप डिसाइड करोगे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की बुद्धि जो है वो किसी भैंस से भी बदतर है। दैट्स ऑल आई कैन से। यहां पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

जी हाँ दोस्तों, इस दुनिया में बहुत सारी अजीबोगरीब चीजें होती हैं और बहुत ही ज्यादा अजीबोगरीब ट्रेडिशंस भी हैं। जी हाँ, ऐसा ही एक ट्रेडिशन है और फेस्टिवल है हांगकांग का। जी हाँ, सो यहाँ पर हांगकांग का च्युंग चाओ फेस्टिवल, जो कि एक अजीबोगरीब कॉन्टेस्ट जो है वो रखता है हर साल, जहां पर 12 कॉन्टेस्टेंट्स को चूज किया जाता है। 14 मीटर बन टावर पर उन्हें चढ़ना होता है। उन्हें बहुत सारे बंस जो है वो इकट्ठा करने होते हैं। उनके पास जो है वो बैग्स होते हैं, वो जितने बंस जो है अपने बैग में डाल सकते हैं और जितनी हाइट वाले बंस वो अपने बैग में डालते हैं उससे उनको पॉइंट्स मिलते हैं। जी हाँ, और ये ट्रेडिशन जो है वो सेंचुरीज ओल्ड ट्रेडिशन है। ऑफ कोर्स ये इसलिए भी जो है वो किया जाता है ताकि प्रे किया जा सके पीस के लिए और वार्ड ऑफ किया जा सके डिजास्टर्स को। आप लोग बोलोगे कि हैं ये तो सच में खतरनाक है। वेल ऑफ कोर्स मैंने कहा ना, इस दुनिया में बहुत ही अजीबोगरीब चीजें होती हैं। सो जो सबसे ऊपर पहुंच जाता है और जो सबसे टॉप पे जो बन है जिसको वो हासिल कर लेता है वो कंटेस्टेंट जो है वो जीत जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि वही लेकर आएगा गुड फॉर्च्यून कंट्री के लिए। जी हाँ, आप लोग बोलोगे कि कंट्री, अब हांगकांग कंट्री कहां रही है, वो तो स्टेट बन गई है ना चाइना की। वेल आपने सही कहा, बट द थिंग इज कि यहां पर बहुत सारे लोग जो है वो लिटरली अपनी पूरी कॉम्पिटिटिवनेस के साथ ऊपर की ओर जाते हैं और वो बिल्कुल माउंटेन क्लाइंबिंग की तरह नजर आता है। बस फर्क सिर्फ इतना ही है कि माउंटेन क्लाइंबिंग में आपको सिर्फ अपना ध्यान रखना है, लेकिन यहां पर आपको अपना ध्यान रखते रखते साथ में बंस को भी जो है वो इकट्ठा करना है। और ये ट्रेडिशन है। जी हाँ, ऐसे ही ट्रेडिशन अफ्रीका में भी है, बाय द वे थोड़े से डिफरेंट है बट है जरूर। यहां पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

भी होगा, ग्रुप भी होगा और फिजी का फ्लेवर भी फुल ऑन होगा। ब्रिस्बेन तैयार हो जाओ। क्यूबॉल 2026 सॉकर टूर्नामेंट प्रेजेंटेड बाय क्वींसलैंड फिजी फुटबॉल एसोसिएशन। टूर्नामेंट होगा संडे 31 मई और थर्सडे 4 जून से संडे 7 जून तक एट अकाशिया रिज सॉकर क्लब, 174 मॉर्टिमर रोड, अकाशिया रिज 4110। ग्राउंड पे चलेगा फुल सॉकर का टशन, ओपन्स, मास्टर्स एंड लेजेंड्स। हर मैच में एनर्जी, एक्साइटमेंट और क्राउड का शोर। और भाई खाने का सीन तो और भी डेंजरस है। फिजी स्टाइल बारबेक्यू, स्पाइसी डक करी, यम्मी पुलाव और ठंडी ठंडी फिजी आइस ब्लॉक। तो इन डेट्स पर घर पे मत बैठना, फैमिली फ्रेंड्स के साथ आ जाना क्यूबॉन्ग सॉकर टूर्नामेंट 2026 में। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें अब्दुल रहीम 0423-342-272 या फिर सेक्रेटरी रे अली 0413-868-240 और विजिट करो briswani.com के इवेंट सेक्शन में। क्यूबॉन्ग 2026 आपका इंतजार रहेगा।

0: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्टवेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज ranicreations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।
1: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरनमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखें। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।
2: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM। शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निविया के साथ। दोस्तों, ड्रेक ने फिर से खतरनाक काम कर दिया है। जी हाँ, आप लोगों को तो पता ही है, मशहूर सिंगर ड्रेक, उन्होंने एक और खतरनाक कारनामा करके दिखा दिया। अभी थोड़े दिन पहले जब उन्होंने अपनी तीनों एल्बम्स एक साथ लॉन्च कर दी, तो उन्होंने एप्पल म्यूजिक और स्पॉटिफाई दोनों को क्रैश कर दिया। अब उसके बाद ये सब करने के बाद Spotify के बाद एप्पल म्यूजिक के बाद बिलबोर्ड 200 पर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड तीनों स्पॉट्स पे उन्हीं की एल्बम्स बनी हुई हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। सो तीनों पर वही है, मतलब जो टॉप थ्री होते हैं बिलबोर्ड 200 में, उस तीनों पे ही बिलबोर्ड पे बने हुए हैं ड्रेक। मतलब ड्रेक ने कह दिया है कि ओके, देर आए दुरुस्त आए, और क्या खतरनाक तरीके से आए। जी हाँ, मतलब आए थे तभी बहुत ज्यादा जो है वो शोर हुआ था, क्योंकि एप्पल म्यूजिक एंड स्पॉटिफाई क्रैश हो गया था, लेकिन अब बिलबोर्ड को भी वो क्रैश कर रहे हैं, क्योंकि पहले तीन जो है वो पॉइंट्स बोले गए, पहले तीन नंबर्स पर वही छाए हुए हैं। ही इज लाइक कि ओके, आई विल नॉट अलाउ एनीवन टू टेक माय प्लेस, बिकॉज आई एम द किंग ऑफ बिलबोर्ड, और यहां पर मैं रूल करने के लिए आया हूं। जी हाँ, मतलब ऐसा पहली बार हुआ है, ऐसा इससे पहले कभी नहीं देखा गया था, कि कैसे एक आर्टिस्ट जिसने अपनी एल्बम्स लॉन्च की और उसने दो बड़े बड़े म्यूजिक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स क्रैश कर दिए, और उसके बाद बिलबोर्ड को भी डोमिनेट कर दिया। क्या बात है। सो ड्रेक, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। और यहां पर आप मुझे बताइए, क्या आप भी ड्रेक के फैन हो या नहीं, क्योंकि अगर आप नहीं हो तो आपको सच में होना चाहिए।

जी हाँ दोस्तों, और इसी के साथ अब वक्त हो गया है अपने फेवरेट सेगमेंट की तरफ जाने का, विच इज ओल्ड इज गोल्ड। जी हाँ, ओल्ड इज गोल्ड सेगमेंट की शुरुआत होने वाली है, और उसका वही मतलब है जो आप सोच रहे हो, मतलब कि पुराने गानों का खूबसूरत सा संगम, और साथ में होगा पुराने किस्सों का भी बहुत सारा खूबसूरत सा माहौल। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, जल्दी से अपनी पुराने गानों से रिलेटेड फरमाइश हमें भेज दीजिए, क्योंकि दिस इज द परफेक्ट टाइम। और यहां पर जो गाना मैं आपके लिए प्ले करने वाली हूं वो बहुत ही खूबसूरत है, उसका नाम है उनसे मिली नजर की मेरे होश उड़ गए। क्या बात है, मैं हमेशा कहती हूँ शुरुआत हमेशा नजरों से होती है, और जब नजरें कमाल करती हैं उसके बाद सिर्फ और सिर्फ बवाल होता है।

जी हाँ दोस्तों, जब भी बात आती है उस एरा की फिल्म इंडस्ट्री की तो राजेश खन्ना का नाम बहुत ऊपर आता है। और राजेश खन्ना हिंदी फिल्म जगत के इकलौते सुपर सुपरस्टार हैं, ऐसा मैं नहीं, बहुत सारे एक्टर्स कहते हैं, ऐसी उनकी फिल्मोग्राफी कहती है। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि जिस पिक्चर से इस जर्नी की शुरुआत हुई, इस सफलता की शुरुआत हुई, जो कि थी हाथी मेरा साथी, और उसमें वो इतना खराब अभिनय कर रहे थे कि लिटरली डायरेक्टर ने इतना तक कह दिया था कि तुम क्या कर रहे हो, अच्छे से एक्टिंग करो नहीं तो रहने दो। जी हाँ, इतना तक कह दिया गया था राजेश खन्ना को। तनुजा थी उसमें, उस पिक्चर में उनके साथ, और वहां पर एक ऐसा पल आया जब राजेश खन्ना अपना एक्ट अच्छे से कर ही नहीं पा रहे थे, एक सीन अच्छे से शूट कर ही नहीं पा रहे थे। डायरेक्टर ने एक टेक लिया, दो टेक लिए, तीन टेक लिए, और फिर बहुत सारे टेक्स के बाद भी जब राजेश खन्ना अच्छे से नहीं कर पाए तो डायरेक्टर ने सामने से कह दिया कि क्या कर रहे हो, तुम सबका टाइम वेस्ट कर रहे हो, अच्छे से करना है तो करो नहीं तो रहने दो। जी हाँ, ऐसा भी हो सकता था कि अगर थोड़ी देर और ऐसा चलता रहता तो राजेश खन्ना को वो फिल्म छोड़नी पड़ती। लेकिन राजेश खन्ना ने उस चीज को चैनल किया, उस क्रिटिसिज्म को चैनल किया, और जब उन्होंने वापसी की उस सीन के लिए तो क्या खतरनाक वापसी की। जी हाँ, और बाकी की तो आपको पता ही है, द रेस्ट इज हिस्ट्री। हाथी मेरा साथी ना सिर्फ बहुत ज्यादा हिट हुई बल्कि सुपर डुपर हिट हुई, और वहां से राजेश खन्ना के स्टारडम का सफर शुरू हुआ, वो स्टारडम जिसको छू पाने में आज भी लोग नाकामयाब हैं। जी हाँ, यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

0: Excuse me, may I? Some matches are made in heaven and some are made at weddings. Every wedding is special. Think weddings, think Roy Singh. From the grand ballroom to your childhood backyard to a faraway beach, the big day comes in all sizes and styles, and that is why I'm proud that you have trusted me with your civil wedding, and I cannot wait to help you create yours. Contact me, Roy Singh, today on 0411-022-602, 0411-022-602, or email me at roylindrasingh@gmail.com. Think weddings, think Roy Singh.
1: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660।
2: जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM। शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निव्या के साथ। दोस्तों, जब बोल्ड और स्टाइलिश एक्ट्रेसेस की बात हो तो जीनत अमान का नाम बहुत ऊपर आता है। जी हाँ, जैसे कि जो एक्टर्स की बात करें तो देवानंद राजेश खन्ना वॉज ट्रेंड सेटर, वैसे ही जीनत अमान वॉज ऑल्सो द ट्रेंड सेटर। जी हाँ, ऐसा कहा जाता है कि जो खूबसूरत कपड़े वो पहनती थी उसमें उनका भी कंट्रीब्यूशन होता था। वेल ऑफ कोर्स उस टाइम स्टाइलिस्ट नहीं होते थे, लेकिन ड्रेस डिजाइनर्स होते थे, कोलैबोरेशंस होती थी, डायरेक्टर आते थे और फिर जो है वो कैरेक्टर के हिसाब से उसके कॉस्ट्यूम्स अटायर जो है वो डिसाइड होते थे। लेकिन जब उनसे पूछा गया कि आपने लिटरली अपने स्टाइल को अपनी हर एक मूवी में बहुत ज्यादा सीरियसली लिया है, क्या रीजन था, कैसे आप अपनी इतनी ज्यादा गेम चेंजर रही, तो जीनत अमान सामने से कहती हैं कि चुरा लिया जो तुमने दिल को। जी हाँ, उसमें वो जो व्हाइट कलर की खूबसूरत सी ड्रेस आपने देखी है विद यू नो नेक पीस एंड एवरीथिंग, आप देखोगे तो वो वाला फैशन जो है वो फिर से एंट्री मार चुका है। मतलब आजकल जो आप फैशन देख रहे हो, ट्यूल ड्रेसेस यू नो एंड वो जो चोकर्स होते थे, चोकर इज व्हाट शी वाज वेयरिंग देयर। लाइक लिटरली आप खुद सोचिए उस एरा का जो डिजाइन थे, वो फैशन थे, वो कितने अपने वक्त से आगे थे। लेकिन आप फिर भी यही कहोगे और हम सब यही कहेंगे कि फैशन तो आता है दोबारा दोबारा दोबारा। जी हाँ, कुछ वक्त के लिए जाता है और फिर से एंट्री मारता है थोड़े से डिफरेंट ट्विस्ट के साथ। जीनत अमान कहती हैं कि उसमें कुछ चीजें जो है मैं हमेशा अपनी रखती थी। वेल ऑफ कोर्स डायरेक्टर चूज करते थे, कॉस्ट्यूम डिजाइनर्स चूज करते थे, बट मेरा भी थोड़ा सा एफर्ट जो है वो रहता था। यहां पर डॉन की जब बात की गई कि डॉन में उन्होंने अपने बाल जो है वो पूरी तरह से कटवा दिए थे, तो उन्होंने कहा कि हाँ, मैं चाहती तो विग पहन सकती थी लेकिन मैंने डिसाइड किया

कि नहीं मुझे ज्यादा रियल दिखना है, मुझे ज्यादा उस कैरेक्टर में रचा बसा दिखना है, इसलिए मैंने वो किया। कपड़ों से लेके वो बोल्ड खूबसूरत अटायर्स तक, हर एक चीज में जीनत अमान से बहुत सारे लोग आज भी इंस्पिरेशन लेते हैं, क्योंकि उनकी जो बोल्डनेस थी, उनकी जो मॉडर्ननेस थी, वो आज भी बहुत सारी अभिनेत्रियों को, इन्फ्लुएंसर्स को एडमायर करने पे मजबूर कर देती है। यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

जी हाँ दोस्तों, और इसी के साथ अब आपसे विदा लेने का वक्त हो गया है। जी हाँ, जाने का वक्त हो गया है, बट डोंट वरी, टेंशन नहीं लेने का, क्योंकि कल वापस आएंगे, एंटरटेन करने आएंगे, स्ट्रेस मुक्त करने आएंगे, बहुत सारे गाने सुनाएंगे और गपशप भी बहुत सारी आपके साथ करके जाएंगे। लेकिन आज आपको क्या करना है, वेल ऑफकोर्स आपको बताना है मुझे क्या आपके इलाके में बारिश हो रही है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले बहुत ही फनी सिचुएशन हुई जब मैंने बताया था कि आज बारिश होने के पूरे पूरे चांसेस हैं और कहीं कहीं पर बारिश हो सकती है, कहीं कहीं पर नहीं होगी। तो वहां पर मेरी एक बहुत ही क्यूट लिसनर है, उन्होंने मुझे वीडियो भेजा हुआ था एंड शी इज लाइक कि बारिश नहीं हो रही है, निव्या शर्मा तुमने बोला था बारिश होगी, एंड आई वाज लाइक या मुझे दिख रहा था कि बारिश होगी बट अब वो नहीं हो रही उस प्रॉपर पर्टिकुलर इलाके में, तो वो सिचुएशन डिफरेंट है। आप मुझे बताइए क्या आपके इलाके में बारिश हो रही है कि सिर्फ मेघा और बदरा छाए हुए हैं, ऐसा लग रहा है कि हो सकती है, होने वाली है लेकिन हो नहीं रही है, जरूर बताइएगा। इसी के साथ बाय, सी यू, टाटा, सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM, हेल्दी रहिए, हैप्पी रहिए, मुस्कुराते रहिए, गाते रहिए, खाते रहिए, और ये रहा आपके लिए एक और खूबसूरत सा गाना मेरी तरफ से।

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
1: तूने ओम्स और असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए, ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in, व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM। मैं हूं निव्या शर्मा और स्वागत है आपका आज के न्यूज बुलेटिन में। सबसे पहले शुरुआत हमेशा की तरह ब्रिस्बेन की कुछ खास खबरों के साथ। ब्रिस्बेन बुलेट्स को मिला नया NBA स्टार कोच। ब्रिस्बेन के स्पोर्ट्स लवर्स के लिए बड़ी खबर, बास्केटबॉल टीम ब्रिस्बेन बुलेट्स ने आज घोषणा की है कि पूर्व NBA फॉरवर्ड खिलाड़ी हानो मोटोला अब उनके नए असिस्टेंट कोच होंगे। वहीं बच्चों के सनस्क्रीन को लेकर बड़ा खुलासा। ब्रिस्बेन में आज सुबह से एक खबर काफी चर्चा में है। 9 न्यूज की एक खोजी रिपोर्ट में सामने आया कि ऑस्ट्रेलिया में बच्चों के लिए बिकने वाले कुछ सनस्क्रीन प्रोडक्ट्स में 4MBC नाम का केमिकल इस्तेमाल हो रहा है जो यूरोप और अमेरिका में बैन है। इसी के साथ ब्रिस्बेन लायंस के कोच का बड़ा बयान। फुटबॉल AFL की दुनिया से खबर है कि पिछले मैच में करारी हार के बाद ब्रिस्बेन लायंस के कोच क्रिस फैगन ने अपने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया है। उन्होंने मीडिया से कहा कि टीम के इस हार से घबराने की जरूरत नहीं है। वहीं ब्रिस्बेन में विंटर फेस्टिवल्स की तैयारी। जैसे जैसे ठंड का मौसम बढ़ रहा है, ब्रिस्बेन काउंसिल ने शहर के पार्कों और साउथ बैंक में होने वाले विंटर फेस्टिवल्स की तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस बार लोकल कलाकारों और फूड स्टॉल्स को बढ़ावा देने के लिए खास इंतजाम किए जा रहे हैं। वहीं क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी का नया रिसर्च प्रोजेक्ट। ब्रिस्बेन की मशहूर क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी ने आज एक नया हेल्थ रिसर्च प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। इस प्रोजेक्ट के तहत बदलते मौसम और पॉल्यूशन का बच्चों की सेहत पर क्या असर पड़ता है। वहीं ब्रिस्बेन रियल एस्टेट में नया ट्रेंड। प्रॉपर्टी मार्केट में खबर आ रही है कि ब्रिस्बेन के आसपास के इलाकों में अब लोग बड़े घरों की जगह इको फ्रेंडली और छोटे अपार्टमेंट्स को ज्यादा पसंद कर रहे हैं। इसी के साथ अब जरा चलते हैं सीधा भारत की कुछ महत्वपूर्ण खबरों की तरफ। सबसे पहले क्वाड देशों की बड़ी मीटिंग न्यू दिल्ली में। आज नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में क्वाड देशों यानी भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के विदेश मंत्रियों की एक बहुत ही अहम मीटिंग हुई है। वहीं भारत और अमेरिका के बीच बड़ा समझौता। इसी मीटिंग के दौरान आज भारत और अमेरिका ने क्रिटिकल मिनरल्स फ्रेमवर्क नाम की एक बड़ी डील साइन की है। इसका सीधा मतलब यह है कि आने वाले समय में एडवांस टेक्नोलॉजी, मोबाइल और इलेक्ट्रिक गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाले खास मिनरल्स के लिए भारत को बड़ी मदद मिलेगी। वहीं फेडरेशन कप में नया नेशनल रिकॉर्ड। स्पोर्ट्स लवर्स के लिए भारत से एक और बड़ी खबर है। एथलेटिक्स फेडरेशन कप में धावक गुरविंदर सिंह ने कमाल कर दिया है। उन्होंने 100 मीटर की रेस को सिर्फ 10.9 सेकंड में पूरा करके एक नया नेशनल रिकॉर्ड बना दिया है। वहीं एशियन रेसलिंग में भारत को 2 गोल्ड। वियतनाम में चल रही एशियन अंडर 23 रेसलिंग चैंपियनशिप में आज भारतीय पहलवानों का दबदबा देखने को मिला। भारत ने इस चैंपियनशिप में शानदार शुरुआत करते हुए आज ही 2 गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिए हैं। इसके साथ अब जरा चलते हैं सीधा अंतर्राष्ट्रीय खबरों की तरफ। नॉर्थ कोरिया का नया मिसाइल टेस्ट। दुनिया भर की नजरें एक बार फिर नॉर्थ कोरिया पर टिक गई हैं। आज सुबह नॉर्थ कोरिया ने अपनी पश्चिमी सीमा से समुद्र की तरफ एक शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल और कुछ दूसरे हथियार दागे हैं। वहीं नॉर्वे चेस टूर्नामेंट की शुरुआत। ओस्लो में आज से दुनिया का सबसे मशहूर नॉर्वे चेस 2026 टूर्नामेंट शुरू हो गया है। इस बार ये मुकाबला एक ऐतिहासिक लाइब्रेरी के अंदर हो रहा है। वहीं अमेरिका चीन रिश्तों पर दुनिया की नजर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के चीन दौरे के ठीक बाद आज पूरी दुनिया की नजरें एशिया पैसिफिक रीजन पर टिकी हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस दौरे के बाद अमेरिका और चीन के बीच बिजनेस और सिक्योरिटी को लेकर कुछ बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। वहीं यूरोप में डिफेंस बजट को लेकर चर्चा। लिथुआनिया और बाकी यूरोपीय देशों ने खबर आ रही है कि आने वाले समय में रक्षा यानी कि डिफेंस पर खर्च बहुत बढ़ने वाला है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF ने अपनी ताजा रिपोर्ट में कहा कि लगातार बढ़ते ग्लोबल तनाव के कारण देशों को अपनी सेना और सुरक्षा पर ज्यादा बजट खर्च करना पड़ रहा है। इसी के साथ मिडल ईस्ट में शांति के लिए क्वाड की अपील, आज दिल्ली में जुटे भारत, अमेरिका और जापान के और ऑस्ट्रेलिया के मंत्रियों ने मिडल ईस्ट यानी पश्चिम एशिया के हालातों पर भी चिंता जताई है। सभी देशों ने मिलकर अपील की है कि रेड सी यानी कि लाल सागर और स्वेज नहर के रास्ते होने वाले इंटरनेशनल व्यापार को सुरक्षित रखा जाए। इसके साथ अब जरा चलते हैं कुछ खेल समाचारों की तरफ। सबसे पहले आईपीएल 2026 का पहला क्वालिफायर आज, क्रिकेट फैंस के दिलों की धड़कनें आज बढ़ी हुई हैं। आईपीएल 2026 में आज धर्मशाला के खूबसूरत मैदान क्वालिफायर वन का महामुकाबला होने जा रहा है। वहीं दिल्ली कैपिटल्स की कोलकाता पर शानदार जीत, बीती रात ईडन गार्डन्स में खेले गए एक रोमांचक आईपीएल मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रनों से हरा दिया। वहीं शतरंज में गुकेश और प्रज्ञानंदा का मैराथन मुकाबला, नॉर्वे चेस से खेल की दुनिया की सबसे बड़ी खबर आ रही है कि भारत के डी गुकेश ने जर्मनी के विंसेंट कीमर को करीब 5 घंटे वाले 144 चालों के एक मैराथन मैच में हरा दिया। वहीं ग्लोबल बास्केटबॉल में बड़ा बदलाव, इंटरनेशनल बास्केटबॉल की दुनिया में कोचों की अदला बदली तेज हो गई है। फिनलैंड के मशहूर बास्केटबॉल खिलाड़ी और पूर्व एनबीए स्टार हानो मोटाला को एक बड़ी इंटरनेशनल टीम की कमान सौंपी जा रही है। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अब आपसे कल, तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो।
1: कहते हैं शादी के बाद मोहब्बत हो ही जाती है,

सिर तुम्हें चाहता हूं। तुम्हारी खातिर मैं सारी दुनिया से लड़ सकता हूं।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे उमसॉग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई।
2: ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।

0: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270355 पर, या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270355। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270355, या फिर ईमेल करे permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, ये प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।
1: बिल्कुल मजा नहीं आया।
2: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
1: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
2: किस दुनिया में हो भाई? क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से। और तो और, हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
1: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ, मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
2: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
3: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 04006644355 पर, याद रहे 04006444355 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
4: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
5: 11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number.

रोल भी होगा, ग्रुप भी होगा और फीजी का फ्लेवर भी फुल ऑन होगा। ब्रिस्बेन तैयार हो जाओ। क्यूब ऑफ 2026 सॉकर टूर्नामेंट प्रेजेंटेड बाय क्वींसलैंड फीजी फुटबॉल एसोसिएशन। टूर्नामेंट होगा संडे 31 मई और थर्सडे 4 जून से संडे 7 जून तक एट अकाशिया रिज सॉकर क्लब, 174 मॉर्टिमर रोड, अकाशिया रिज 4110। ग्राउंड पे चलेगा फुल सॉकर का टशन, ओपन्स, मास्टर्स एंड लेजेंड्स। हर मैच में एनर्जी, एक्साइटमेंट और क्राउड का शोर। और भाई खाने का सीन तो और भी डेंजरस है। फीजी स्टाइल बारबेक्यू, स्पाइसी डक करी, यम्मी पुलाव और ठंडी ठंडी फीजी आइस ब्लॉक। तो इन डेट्स पर घर पे मत बैठना, फैमिली फ्रेंड्स के साथ आ जाना क्यूबॉन्ग सॉकर टूर्नामेंट 2026 में। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें अब्दुल रहीम 0423-342-272 या फिर सेक्रेटरी रे अली 0413-868-240 और विजिट करो brisbane.com के इवेंट सेक्शन में। क्यूबॉन्ग 2026 आपका इंतजार रहेगा।

0: फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडीज, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशन विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज ranicreations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।
1: Hi, this is Amitabh Bachchan.
2: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
3: Hi guys, I'm Manmeet from the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
4: Hi, this is Salman Khan.
5: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
6: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
7: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Alia.
8: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Brisbane से।
9: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Shahrukh Khan.
10: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Brisbane.

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसॉग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे उमसॉग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई।
2: ओमसॉग, केयरिंग विद डिग्निटी।

गोल भी होगा, ग्रुप भी होगा और फीजी का फ्लेवर भी फुल ऑन होगा। ब्रिस्बेन तैयार हो जाओ। क्यूब ऑफ 2026 सॉकर टूर्नामेंट प्रेजेंटेड बाय क्वींसलैंड फीजी फुटबॉल एसोसिएशन। टूर्नामेंट होगा संडे 31 मई और थर्सडे 4 जून से संडे 7 जून तक एट अकाशिया रिज सॉकर क्लब, 174 मॉर्टिमर रोड, अकाशिया रिज 4110। ग्राउंड पे चलेगा फुल सॉकर का टशन, ओपन्स, मास्टर्स एंड लेजेंड्स। हर मैच में एनर्जी, एक्साइटमेंट और क्राउड का शोर। और भाई खाने का सीन तो और भी डेंजरस है। फीजी स्टाइल बारबेक्यू, स्पाइसी डक करी, यम्मी पुलाव और ठंडी ठंडी फीजी आइस ब्लॉक। तो इन डेट्स पर घर पे मत बैठना, फैमिली फ्रेंड्स के साथ आ जाना क्यूबॉन्ग सॉकर टूर्नामेंट 2026 में। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें अब्दुल रहीम 0423-342-272 या फिर सेक्रेटरी रे अली 0413-868-240 और विजिट करो brisbane.com के इवेंट सेक्शन में। क्यूबॉन्ग 2026 आपका इंतजार रहेगा।

बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

0: जानो।
1: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
2: अरशाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो, जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
1: अरे वाह, इनका पता बताना।
2: अरशाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शो ग्राउंड, ऑफिस 5-1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अरशाद फ्रॉम अरशाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.

0: ਫਾਇਰ ਐਂਟਸ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰ ਐਂਟਸ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਰ ਐਂਟਸ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਕਿੱਟ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਫਾਇਰ ਐਂਟਸ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਜਾਂ ਫਾਇਰ ਐਂਟਸ QLD ਖੋਜੋ ਜਾਂ 132 ANT ਯਾਨੀ ਕਿ 132-268 ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੈ। ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਬਾਈ ਦ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ।
1: कंटेनर्स फॉर चेंज के माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धन राशि कमाएं। आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है। इसे हम बिन कॉइन कहते हैं। अपने बिन कॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है। बैंक में डालें ना कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें।
0: कंटेनर्स फॉर चेंज राहीं अपने खाली डब्बियां बोतलां तो कमाई करो। तुहाडे हर एक योग खाली कैन बोतल अते कार्टन उते 10 सेंट दा रिफंड प्राप्त हुंदा है। इस नूं असी बिन कॉइन कहंदे हां। अपने बिन कॉइन नूं बचा के रखो, खर्चो जां फिर जिस किसी संस्था जां विषय विच तुहाडा विश्वास है उहनां नूं दान विच दे दिओ। तुहाडे नेड़े एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है। बैंक विच पाओ ना के कूड़ेदान विच। अपना सब तो नजदीकी रिफंड पॉइंट लभण लई वेबसाइट उत्ते जाओ अते अज ही 10 सेंट कमाना शुरू करो।
2: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
3: Na tere varga aashiq vekhya, na tere vargi aashiqi.
4: ARY Films and Salman Iqbal present Love This Song, starring Farhan Saeed and Mamia Shah Jafar, directed by Imran Malik. Love This Song in cinemas this Eid-ul-Azha May.

0: माने या ना माने बात बिल्कुल सही है, मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660।
1: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
2: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आयरन फूड।
1: ऐसा क्या खास है वहाँ?
2: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
1: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
2: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।

वेलकम बैक जी, वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहिए रेडियो स्टेशन रेडियो सोनी 101.1 FM ते जी आर चे संदेश अलग दिनाल सी बने हुए। देखो जी, मैं क्या सी ना 60s दे विच ही आवांगे, तां 60s दे विच ही जाने आ। साल 1965 दी गल हैगी आ। 1965 दे विच ना रोमांटिक फिल्म आर के नारायण दे मशहूर नॉवल ते बनी एक मास्टरपीस हैगी है। फिल्म नू विजय आनंद ने डायरेक्ट कीता सी ते उन्हां दे भाई देवानंद ने इस विच राजू गाइड दा यादगार किरदार निभाया सी। फिल्म दी कहानी राजू ते रोजी, राजू यानी कि देवानंद ते रोजी यानी कि वहीदा रहमान दे इर्द गिर्द घूमती है, जिस विच एक टूर गाइड नू एक मैरिड डांसर दे नाल प्यार हो जाता है ते उन्हां दी जिंदगी पूरी तरह दे नाल बदल जाती है। इस विच एक दिलचस्प गल भी हुंदी है, उस दिलचस्प गल बारे मैं तुहानू जरूर दसना हैगा, पर पहला मैं सोच रही हैगी कि तुहानू एक गीत सुना देनी है।

डिब्बे बोतलों से धनराशि कमाएं। आपके प्रत्येक योग खाली कैन बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है। इसे हम बिनकॉइन कहते हैं। अपने बिनकॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर और चेंज मौजूद है, बैंक में डालें ना कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें।

0: जी अनु जी वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहे ते रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रसोनी 107.1 FM ते जी आज संदेश अलग दिन सी बने हुए हूँ। गल कर रही थी ना मैं देवानंद की मूवी की तो उन्होंने दिलचस्प गल की गल कर रही थी ना मैं उस कहानी की दिलचस्प गल यह कि इस फिल्म का एक अंग्रेजी वर्जन भी बनिया जिसन पर्ल एस बर्क ने लिखा पर देवानंद की सलाह के बावजूद उस वहीदा रहमान नू नहीं लिया गया। फिल्म अपने समय तो काफी अगे सी। फिल्म की पॉपुलरिटी का अंदाजा तुसी इस गल तो लगा सकते हो कि रिलीज के 42 साल बाद 2007 इस नू कांस फिल्म फेस्टिवल दुबारा दिखाया गया। अवार्ड मामले विच तां गाइड ने इतिहास ही रच दिता सी। गाइड फिल्म फिल्म फेयर के इतिहास विच पहली अजिही फिल्म बनी जिसने चार वड्डे अवार्ड बेस्ट फिल्म बेस्ट डायरेक्टर बेस्ट एक्टर बेस्ट एक्ट्रेस अपने नाम लिखा। एस डी बर्मन का संगीत लता मंगेशकर दे गाए गाने अज भी लोगों की जुबान ते रह गए ने। इन्ना नहीं इस ऑस्कर के लिए भी भारत के ऑफिशियल एंट्री के रूप में भेजा गया। टाइम मैगजीन ने भी इस बॉलीवुड की टॉप क्लासिक फिल्मों की लिस्ट में शामिल किया।
1: एक दो गल्लां करनियां सी थोड़ी जिंदगी वास्ते ठीक रहणगियां क्योंकि मेरी जिंदगी च मैं चीजां सीखियां तो तुहानूं दसणियां मेरा फर्ज़ है।

0: अनुज कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5-1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
2: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
3: यार, I'm so worried. Actually, want an experienced lawyer to handle my case.
2: मेरी एडवाइस है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है। एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट।
3: थैंक्स अटर्नी यार, आई एम सो रिलैक्स टू हियर दैट।
2: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

जी अनु जी वेलकम बैक, एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहे ते रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रसवानी 101.1 FM ते जीआरजे संदेश अलग दिनाल तुसी बने होए। देखो शरत चंद्र चट्टोपाध्याय दे नॉवल परिणीता दी भी गल करिए ना, तो परिणीता ता ते उंज तक कई फिल्मां बनियां ने, जिस विच साल 2025 विच आई फिल्म परिणीता काफी यादगार सी, नॉवल दे वाला ही नाम सी। एक खूबसूरत म्यूजिकल रोमांटिक मूवी है। फिल्म विच प्रदीप सरकार ने बतौर डायरेक्टर ते विद्या बालन ने बतौर एक्ट्रेस अपना बॉलीवुड डेब्यू किया सी। फिल्म विच सैफ अली खान ते संजय दत्त ने भी लीड रोल निभाए से, जबकि रायमा सेन ते दिया मिर्जा वर्गे कलाकार सपोर्टिंग रोल विच सी। 16-17 करोड़ दे बजट विच बनी सी इस फिल्म ते इसने ग्लोबल बॉक्स ऑफिस ते 30 करोड़ रुपए कमाए सीगे।

0: नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है, सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
2: के आलम में नशा हो जब तेरे रुखसार देखूं, खुदा ने जब तराशा होगा वो असरार देखूं, निगाहों में बसा है इस कदर ये नूर तेरा, कुर्बान हर दफा हूं तुझको जितनी बार देखूं।

0: The house. जी ना देखो बेरा हो चुके हैं थोड़े तो इजाजत लैन दा पर पर टाटा बाय बाय कहन तो पहला एक फिल्म हैगी है जिस बारे में तुम दसना बहुत ज्यादा जरूरी समझती है तो जरूर दसूंगी वो फिल्म है जी 12th फेल 2023 आई सी फिल्म 12th फेल मनोज कुमार शर्मा ते श्रद्धा जोशी की असल जिंदगी बनी है। फिल्म में दिखाया गया है कि किवें मनोज यानी कि विक्रांत मैसी ने भीषण गरीबी बहुत ज्यादा भयानक गरीबी असफलतावां नाल लड़ते हुए IPS बनने का सपना पूरा किया। फिल्म अनुराग पाठक की इसे नाम दी किताब ते बनी है। रिलीज होने तो बाद इस फिल्म नू दर्शकां ते क्रिटिक्स दोनों ने बहुत ज्यादा प्यार दिता। महज 20 करोड़ विच बनी से फिल्म ते बॉक्स ऑफिस ते 70 करोड़ ते करीब दी कमाई की थी है। इन्ना नहीं नेशनल फिल्म अवार्ड दे विच इसनू बेस्ट फीचर फिल्म चुनिया गया ते विक्रांत मैसी नू इस लई शानदार एक्टिंग दे लई बेस्ट एक्टर दा नेशनल अवार्ड भी मिलिया। उहदे टू स्टेट्स वी नॉवल ते बनी है 2014 विच आई फिल्म टू स्टेट्स चेतन भगत दे मशहूर नॉवल ते बनी एक मजेदार रोमांटिक ड्रामा है। फिल्म दी कहानी दो वक् वक् सूबिया के लवर से इर्द गिर्द घूमती है जो अपने ब्याह के लिए वक् वक् परिवार मनाने की जद्दोजहद लगे रहते हैं। 45 करोड़ बजट बनी सी 175 तो ज्यादा की कमाई की। ढाई सारिया फिल्मा सी नॉवल से बनिया हुई थोनू कोई होर पता हो मैं जरूर दस्यो। रेडियो ब्रिसवानी वनसर ओएनएम सा फेसबुक पेज है जी ब्रिसवानी एट ब्रिसवानी .com ईमेल आई टी है जरिए जेड़ा भी अपना अपना लो सा गलबात जरूर करते रहा करो। बाकी मैं तो यही कहूंगी जी कि अपना बहुत बहुत ख्याल रखा करो। सत श्रीकाल।
1: What does this fight mean to you to defend your title tomorrow night?
2: I'm gonna smash you, boy. Tomorrow night, I'm gonna smash you.

0: ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
1: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
1: बिल्कुल। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे उमसॉग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई।
2: ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।

क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270355 पर, या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270355। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270355, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, ये प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।

0: थी इश्क की मेरे, बस तेरे जैसे कुछ किरदार धोखेबाज निकले।
1: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270 पर, या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270 रिमेम्बर द नंबर इज 04111270 या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।

रोल भी होगा, ग्रूव भी होगा और फीजी का फ्लेवर भी फुल ऑन होगा। ब्रिस्बेन तैयार हो जाओ। क्यूबॉक 2026 सॉकर टूर्नामेंट प्रेजेंटेड बाय क्वींसलैंड फीजी फुटबॉल एसोसिएशन। टूर्नामेंट होगा संडे 31 मई और थर्सडे 4 जून से संडे 7 जून तक एट अकाशिया रिज सॉकर क्लब, 174 मॉर्टिमर रोड, अकाशिया रिज 4110। ग्राउंड पे चलेगा फुल सॉकर का टशन, ओपन्स, मास्टर्स एंड लेजेंड्स। हर मैच में एनर्जी, एक्साइटमेंट और क्राउड का शोर। और भाई खाने का सीन तो और भी डेंजरस है। फीजी स्टाइल बारबेक्यू, स्पाइसी डक करी, यम्मी पुलाव और ठंडी ठंडी फीजी आइस ब्लॉक। तो इन डेट्स पर घर पे मत बैठना, फैमिली फ्रेंड्स के साथ आ जाना क्यूबॉक सॉकर टूर्नामेंट 2026 में। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें अब्दुल रहीम 0423-342-272 या फिर सेक्रेटरी रे अली 0413-868-240 और विजिट करो brisbane.com के इवेंट सेक्शन में। क्यूबॉक 2026 आपका इंतजार रहेगा।

0: दिस इज अमिताभ बच्चन
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
2: हाय गाइस, आई एम मनमीत, वन ऑफ द मीत ब्रदर्स, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
3: हाय, दिस इज सलमान खान और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
4: हाय, दिस इज दीपिका पादुकोण और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
5: टू एवरीवन ट्यूनिंग इनटू रेडियो ब्रिसवानी, दिस इज आलिया।
6: हाय, मैं हूं तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
7: टू एवरीवन ट्यूनिंग इनटू रेडियो ब्रिसवानी, दिस इज शाहरुख खान।
8: हाय, दिस इज अजय देवगन और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।

कंटेनर्स फॉर चेंज के माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धनराशि कमाएं। आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है। इसे हम बिन कॉइन कहते हैं। अपने बिन कॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक में डालें ना कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें।

0: Earn money from your empty drink containers with Containers for Change. Your empty eligible cans, bottles and cartons receive a 10 cents refund each. We call it Bincoin. Save, spend or donate your Bincoin to a cause you support. There's a Containers for Change near you. Bank it, don't bin it. Visit the website to find your nearest refund point and start trading for 10 cents today.
1: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
2: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
1: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
2: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से। और तो और, हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
1: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ, मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
2: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
3: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर। याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
4: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

कंटेनर्स फॉर चेंज के माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धनराशि कमाएं। आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है। इसे हम बिन कॉइन कहते हैं। अपने बिन कॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक में डालें ना कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें।

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

कंटेनर्स फॉर चेंज के माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धनराशि कमाएं। आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है। इसे हम बिन कॉइन कहते हैं। अपने बिन कॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स और चेंज मौजूद है, बैंक में डालें ना कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें।

भी होगा, ग्रुप भी होगा और फीजी का फ्लेवर भी फुल ऑन होगा। ब्रिस्बेन तैयार हो जाओ। क्यूब ऑफ 2026 सॉकर टूर्नामेंट प्रेजेंटेड बाय क्वींसलैंड फीजी फुटबॉल एसोसिएशन। टूर्नामेंट होगा संडे 31 मई और थर्सडे 4 जून से संडे 7 जून तक एट अकाशिया रिज सॉकर क्लब, 174 मॉर्टिमर रोड, अकाशिया रिज 4110। ग्राउंड पे चलेगा फुल सॉकर का टशन, ओपन्स, मास्टर्स एंड लेजेंड्स। हर मैच में एनर्जी, एक्साइटमेंट और क्राउड का शोर। और भाई खाने का सीन तो और भी डेंजरस है। फीजी स्टाइल बारबेक्यू, स्पाइसी डक करी, यम्मी पुलाव और ठंडी ठंडी फीजी आइस ब्लॉक। तो इन डेट्स पर घर पे मत बैठना, फैमिली फ्रेंड्स के साथ आ जाना क्यूबॉन्ग सॉकर टूर्नामेंट 2026 में। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें अब्दुल रहीम 0423-342-272 या फिर सेक्रेटरी रे अली 0413-868-240 और विजिट करो brisbane.com के इवेंट सेक्शन में। क्यूबॉन्ग 2026 आपका इंतजार रहेगा।

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
1: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाई-अप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in, व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 844-838-1360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।

फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बल्कावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज ranicreations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।

बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

0: ऐ मेरी हमरक्स मुझको थाम ले, जिंदगी से भाग कर आया हूं।
1: बारिश हो रही है, ये बारिश ना होती तो भी ना आती।

कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा स्थापित अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ अर्थात इस्कॉन की ओर से प्रस्तुत किया जा रहा है। आध्यात्मिक, धार्मिक, सामाजिक और पारिवारिक उद्देश्य आपकी सेवा में वेदवाणी।

आप सुन रहे थे कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा स्थापित अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ अर्थात इस्कॉन की ओर से प्रस्तुत कार्यक्रम वेदवाणी को, जिनमें हम आपकी सेवा में आध्यात्मिक, धार्मिक, सामाजिक और पारिवारिक उद्देश्य को लेकर आते हैं हर रविवार को सुबह 8 बजे से और हर बुधवार को सुबह 5 बजे से।

आप सभी सुन रहे हैं रेडियो प्रिस्वानी और आप सभी को वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभातन, नमस्कार और मेरे प्यारे प्यारे श्रोताओं को ढेर सारा प्यार। दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं चांदनी का सफर, आपके अपने दोस्त और होस्ट आरजे चांदनी जैन के साथ। वैसे आज सुबह मैं आप सभी के लिए एक सवाल लेकर आई हूँ। दोस्तों, अगर आपको 100 करोड़ रुपए मिल जाए और कंडीशन हो कि आप उसे सिर्फ 24 घंटे में ही खर्च कर सकते हो, तो सबसे पहले क्या खरीदोगे? घर, गाड़ी या फिर वर्ल्ड टूर में जाओगे? सोचिए और मुझे फटाफट मैसेज करके जरूर बताएं। तो दोस्तों, इसी के साथ अगले 1 घंटे तक हम बात करेंगे कुछ ऐसी चीजों की जो आपको हंसाएगी, हैरान भी करेगी और शायद थोड़ा सा इमोशनल भी कर सकती है। तो क्या करें, बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं ये प्यारा सा ट्रैक ऑन योर रेडियो ब्रिस्वानी।

आप सभी सुन रहे हैं रेडियो प्रेसवानी में प्रोग्राम जाने का सफर। दोस्तों चलिए फिर शुरुआत करते हैं एक धमाकेदार फैक्ट के साथ। क्या आप जानते हैं ऑक्टोपस के 3 हार्ट्स होते हैं और उसका खून ब्लू कलर का होता है। जो 2 दिल होते हैं वो गिल्स तक ब्लड पहुंचाते हैं और एक पूरा शरीर में पहुंचता है। नेचर भी कितनी कमाल की है ना दोस्तों, बिल्कुल सरप्राइजेस से भरी हुई। वैसे कुछ याद भी आया। देखिए ऑक्टोपस के पास 3 हार्ट्स होते हैं और खून ब्लू कलर का होता है और एक हम है जो एक दिल भी संभाल नहीं सकते। एक दिल संभालना भी कितना मुश्किल हो जाता है, सहमत हो ना। वैसे ऑक्टोपस को भाई हैट्स ऑफ है। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं ये प्यारा सा ट्रैक और आपकी मॉर्निंग को बनाते हैं खूबसूरत। सुनते रहिए रेडियो ब्रसवानी।

आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी। तो आइए अब थोड़ी सी अपडेट जान लेते हैं ब्रिस्बेन ओलंपिक्स की। दोस्तों, ब्रिस्बेन 2032 ओलंपिक्स के मेन स्टेडियम प्रोजेक्ट को लेकर विक्टोरिया पार्क में डिस्कशंस और प्रोटेस्ट जो है वो चल रहे हैं। कंस्ट्रक्शन अगले हफ्ते शुरू होने की तैयारी में है और ये प्रोजेक्ट जो है वो ब्रिस्बेन की फ्यूचर का एक बड़ा हिस्सा माना जा रहा है। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे, सुनते हैं नेक्स्ट ट्रैक।

रग्बी लीग फैंस के लिए एक गुड न्यूज है। आप सभी सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी। दोस्तों, ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने रग्बी लीग वर्ल्ड कप 2026 के लिए फंडिंग अनाउंस की है। टूर्नामेंट अक्टूबर नवंबर में होगा और ब्रिस्बेन भी मेजर होस्ट सिटीज में शामिल है। तो है ना गुड न्यूज। तो आइए इसके साथ बढ़ते हैं आगे, सुनते हैं नेक्स्ट ट्रैक।

आप सभी सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी। तो आइए फिर अगली अपडेट की ओर बढ़ते हैं। NRL मैजिक राउंड को ऑफिशियली ब्रिस्बेन में 2032 तक एक्सटेंड कर दिया गया है और ये इवेंट हर साल लाखों स्पोर्ट्स फैन को अट्रैक्ट करता है। तो चलिए इसी के साथ थोड़ा सा फन हो जाए। दोस्तों, एक बॉलीवुड क्वेश्चन मैं आप सभी के साथ पूछती हूँ। अगर आपको एक मूवी में एक्टिंग करने का चांस मिले तो कौन सी मूवी चूज करोगे? नंबर वन दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, नंबर टू शोले, नंबर थ्री हेरा फेरी और नंबर फोर रॉक ऑन। वैसे मुझे तो लगता है हेरा फेरी में बाबू रॉय बनना सबसे मजेदार रहेगा। मुझे मिले मैं तो बाबू रॉय का ही रोल करूंगी। तो आप कौन सा करेंगे, फटाफट से मैसेज करके जरूर बताएं। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे, सुनते हैं ये नेक्स्ट ट्रैक।

रेडियो ब्रिस्वानी आप सभी सुन रहे हैं, प्रोग्राम चल रहा है चांदनी का सफर। दोस्तों, क्या आप जानते हैं दुनिया का सबसे छोटा जो वॉर था वो सिर्फ 38 मिनट्स चला था। जी हाँ, और एक हम हैं, कभी कभी व्हाट्सएप पर ओके की जगह के आ जाए तो उसका रिप्लाई जब हम देखते हैं ना के में, तो हमारा 3 दिन तक वॉर मोड ऑन रहता है। सच कह रही हूँ ना, आपके साथ भी ऐसे ही होता है ना, जब के हम देखते बड़ा गुस्सा आता है और वो वॉर 3 दिन से भी ज्यादा बढ़ जाता है जब तक सामने वाला सॉरी या फिर हमें मनाने नहीं आता। तो चलिए इसी के साथ आपको मनाते हैं इस गीत के साथ। बने रहिए, जुड़े रहिए मेरे साथ रेडियो ब्रिस्वानी में।

मेरे प्यारे श्रोताओं, एक गुड न्यूज है आप सभी के लिए। सनकॉर्प स्टेडियम के लिए 2026 रिकॉर्ड ईयर बन सकता है। स्टेडियम में स्पोर्ट्स के साथ ही साथ कॉन्सर्ट और मेजर इवेंट्स का भी पैक्ड शेड्यूल है, जो कि ब्रिस्बेन को वर्ल्ड क्लास इवेंट्स डेस्टिनेशन बना रहा है। तो है ना गुड न्यूज। तो दोस्तों, अब वक्त हो चला है शो को एंड करने का, और जाते जाते एक प्यारी सी बात जरूर याद रखना, खुश रहने के लिए सब कुछ परफेक्ट होना जरूरी नहीं, नजरिया पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है। आज किसी एक इंसान को स्माइल जरूर दीजिएगा, हो सकता है उस स्माइल से उसका पूरा दिन बहुत अच्छा जाए। जी हाँ, मैं हूँ आपकी दोस्त और होस्ट आरजे चांदनी। आपका दिन प्रोडक्टिव हो, ट्रैफिक कम मिले और कॉफी कभी ठंडी ना हो, यही दुआ है। तो चलिए, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत और सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्बेन।

एक लड़की थी दीवानी सी, एक लड़के पे वो मरती थी, नजरें झुका के शर्मा के गलियों से गुजरती थी, चोरी चोरी चुपके चुपके चिट्ठियां लिखा करती थी, कुछ कहना था शायद उसको, जाने किससे डरती थी, जब भी मिलती थी मुझसे मुझसे पूछा करती थी, प्यार कैसे होता है, ये प्यार कैसे होता है, और मैं सिर्फ यही कह पाता था।

नमस्कार, मैं सताक्षी, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM। आइए सुनते हैं अब तक की प्रमुख खबरें और सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय खबरें। इबोला का प्रकोप, 20 दिन में 200 से ज्यादा मौतें, अमेरिका, भारत, फ्रांस, जापान और अफ्रीकी देशों ने उठाए कदम। अफ्रीका महाद्वीप में इबोला वायरस तेजी से फैल रहा है। कांगो और युगांडा में बढ़ते मामलों को देखते हुए भारत सरकार ने सतर्कता बरतते हुए कांगो, युगांडा और दक्षिणी सूडान के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी है। केंद्र ने भारतीय नागरिकों से इन देशों की गैर जरूरी यात्रा टालने की अपील की है। विदेश मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त एडवाइजरी के अनुसार इन तीनों देशों से लौटे या ट्रांजिट यात्रियों को 21 दिनों तक अपनी सेहत पर नजर रखनी होगी। AI से बनी कहानी को मिला साहित्य का अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, विवादों में घिरा मामला। जमीर नजीर की द सपोर्ट इन द ग्रोव की कहानी को 2026 के कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज की कैरिबियन रीजनल कैटेगरी में प्राइज मिला था। अब इसको लेकर सवाल उठने लगे हैं। कुछ लेखकों, शोधकर्ताओं और AI के जानकारों ने इसे AI जनरेटेड या फिर कम से कम AI की भारी मदद से तैयार करके बनाए जाने की संभावना व्यक्त की है। यह स्टोरी प्रतिष्ठित ब्रिटिश साहित्यिक पत्रिका ग्रांटा द्वारा ऑनलाइन प्रदर्शित की गई थी। ये पब्लिकेशन कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज के साथ मैगजीन की लंबे समय से चली आ रही साझेदारी का एक हिस्सा है। बांग्लादेश ने ट्रैफिक से निजात पाने के लिए शुरू किया नया सिस्टम, AI से पहुंच रहा घरों में चालान। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में घनी आबादी और भयंकर ट्रैफिक के लिए हमेशा से बदनामी रही है। पूरे ढाका में बसें, कारें, मोटरसाइकिलें और रिक्शे भी एक दूसरे से होड़ करते नजर आते हैं। ऐसा लगता है मानो वो सिग्नलों, पैदल चलने वालों, क्रॉसिंग और यहां तक की ट्रैफिक पुलिस को भी सुविधाओं को बाधा मानते हैं। ऐसे मौके पर पुलिस द्वारा लगाए गए जुर्माने अक्सर बहस का कारण बनते हैं। अब इससे निजात पाने के लिए दुनिया के सबसे भीड़भाड़ वाले शहरों में से एक ढाका ने पहला AI पावर्ड ट्रैफिक सिस्टम शुरू किया है, जिसके चलते ट्रैफिक को सड़क पर ही कंट्रोल किया जा रहा है और ट्रैफिक नियमों का पालन न करने वालों के घर तक चालान पहुंच रहा है। आइए अब जुड़ते हैं भारत से और सुनते हैं भारतीय खबरें। शूट एंड स्कूट तकनीक से लैस हुई इंडियन फील्ड गन, पलक झपकते ही दुश्मनों के ठिकाने होंगे तबाह। भारतीय सेना ने 105 mm इंडियन फील्ड गन को, जो रेजिमेंट ऑफ आर्टिकल की मुख्य ताकत है, एक ज्यादा घातक हथियार बनाने की दिशा में कदम उठाया है। ये कदम सशस्त्र बलों द्वारा चलाए जा रहे बड़े आधुनिक अभियान का हिस्सा है। सेना ने एक इंडियन फील्ड गन को इस तरह से बदला है कि वो अपने आप निशाना लगा सके। इसका मतलब है कि तोप को लक्ष्य पर सेट करने के लिए डायल को हाथ से घुमाने का काम अब कंप्यूटर के जरिए किया जाएगा। ये थी अब तक की प्रमुख खबरें। अगली खबरों के साथ जल्द होगी मुलाकात। सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी और सताक्षी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: 1701 Brisbane. It's your morning drive show with your host, Amita and Jatish. सुबह का सफर आपके हम सफर जतीश और अमिता
1: आप सभी का स्वागत है।
2: उसको मैं जतीश पूर्णा अकेला हूँ, जैसे आपसे मैं कहता आया हूँ कि तीन हफ्ते की बातचीत है, अभी एक हफ्ता तो होने वाला है दोस्तों, और अमिता छुट्टी पर है। तो चले कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। आप जितने भी लोग हमारे इंटरनेट से भी सुन रहे हैं, चलो आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो मेजबानी पर। थैंक यू फॉर ड्रॉपिंग बाय। और कुछ लोग हमारे ऐसे हैं जो हमेशा आते हैं, थैंक यू सो मच। तो देखते हैं हमारे ट्रैफिक का क्या हाल है यहाँ ब्रिस्बन में। और सेंटेनरी मोटरवे, समना पार्क, समनस पार्क, समनस रोड, सिनेमन पार्क, मल्टी व्हीकल क्रैश लेन और लेन्स रिड्यूस्ड, साउथ बाउंड टूवर्ड्स डेरा। ओहो, क्या ट्रैफिक जैम होगा दोस्तों। इप्सविच मोटरवे गुडना मल्टी व्हीकल क्रैश, वन लेन ब्लॉक ईस्ट बाउंड टूवर्ड्स ब्रिस्बन सिटी। तो चले पैसिफिक मोटरवे रोचडेल, स्टेशनरी व्हीकल है वहां पर, लेन और लेन्स रिड्यूस्ड, और साउथ बाउंड टूवर्ड्स गोल्ड कोस्ट। ठीक है, बस यही आया है दोस्तों। और देखते हैं कि मौसम क्या है। मौसम के लिए कहा गया है कि आज शावर्स होने की संभावना है, और 19 रहेगा, 19 and 24, गुड टेम्परेचर, ऑलमोस्ट 15 मिलीमीटर्स तक कहा गया है। कल के लिए रेन पॉसिबल स्टॉर्म कहा गया है, 18 and 23 रहेगा, 20 to 40 मिलीमीटर्स कहा गया है दोस्तों। फ्राइडे के लिए पॉसिबल शावर्स है, और 14 and 22 डिग्रीज रहेगा, यानी 14 मिनिमम 22 मैक्सिमम, और 1 मिलीमीटर रेन कहा गया है। सैटरडे से लेकर दोस्तों अगले ट्यूजडे तक बारिश नहीं होगी, सनी है, और सैटरडे को कहा गया है 16 and 22, संडे को 13 and 22, मंडे को 11 and 21, और ट्यूजडे को 10 and 23। क्या बात है भाई, 10 डिग्री रहेगा मिनिमम, वाओ। तो ये रहा मौसम। तो चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, और रेडियो बिजवानी आप सुन रहे हैं, थोड़ा सा फिजी का न्यूज सुन लेते हैं। वोइला सिटी हाउसिंग प्रोजेक्ट को ग्रीन सिग्नल दिया गया है। पार्लियामेंट में बताया गया है कि वोइला सिटी प्रोजेक्ट से लगभग 4,800 हाउसिंग लॉट्स डिवेलप किए जाएंगे, और ये फिजी के सबसे बड़े हाउसिंग डिवेलपमेंट्स में से एक माना जा रहा है, और हाउसिंग शॉर्टेज को कम करने में मदद करेगा दोस्तों। हाउसिंग जो शॉर्टेज है इस वर्ल्ड वाइड, ऑल ओवर, ऑस्ट्रेलिया में भी बहुत बुरा है दोस्तों इस समय हाउसिंग शॉर्टेज, यानी होमलेस पीपल। नसोरी में 246 लाइव बुलेट्स और कई मैगजीन्स मिलिट्री अथॉरिटीज को हैंड ओवर की गई है दोस्तों। इस मामले की जांच चल रही है, और यानी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, और सिक्योरिटी एजेंसीज इस पर नजर रखे हुए हैं। तो ये कहां से आ गया भाई। और पार्लियामेंट में एक्टिंग अटॉर्नी जनरल ने कहा कि ड्रग कार्टेल्स पुलिस ऑफिसर्स को ब्राइब करने की कोशिश कर रहे हैं। ऑपोजिशन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने भी डिमांड की है कि एंटी ड्रग मेजर्स का जो असर ग्राउंड लेवल पर नजर आना चाहिए। पुलिस को भी रिश्वत दिया जाता है। गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट में कहा है कि अलेज क्राइम फिगर जोने वकरीसी की मौत की इन्वेस्टिगेशन बिना किसी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस के चाल रही है, बिना किसी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस के चल रही है, यानी देयर इज नो इंटरफेरेंस फ्रॉम पॉलिटिकल पार्ट ऑफ इट। केस फिजी में काफी चर्चा में है इस समय। और प्राइम मिनिस्टर सिथिवेती रबुका ने कहा है कि उनकी जो तबीयत ठीक है और वो आने वाले इलेक्शन पीरियड के लिए तैयार है। साथ ही उन्होंने माना कि कैंपेन शुरू होने पर पार्टी पूरी तरह तैयार नहीं थी। और चलो इतना ही है दोस्तों, और आपसे कह दूं कि आज का जो मैं सवाल करने जा रहा हूं, मुझे थोड़ा प्यार से बोलना पड़ता है, क्योंकि जो गीत है मोहब्बत के बारे में तो ही है ना। बताइए कौन सा गाना है। एक आशिक अपनी महबूबा से कहता है, मैंने सिर्फ प्यार मांगा था, मुझे मना मत करो। दोस्तों बताइए ये किस मशहूर गाने की लाइन है? इससे आसान क्या हो सकता है दोस्तों। आई मेड इट वेरी वेरी सिंपल फॉर यू टुडे। ठीक है, बताइए कौन सा गीत है वो।

जी हाँ दोस्तों, फिल्म उम्मीद है आपको ये गीत अच्छा लगा होगा। दोस्तों रेडियो बिजवानी आप सुन रहे हैं, आपकी अपनी पहचान। और चलो हमने कुछ चर्चा की थी दोस्तों कि सो मेनी पीपल आर होमलेस, क्या कारण है। देखिए, देर इज नॉट वन सिंगल रीजन, होमलेस हैज इंक्रीज इन मेनी प्लेसेस बिकॉज सेवरल फैक्टर्स ऑफन कंबाइन। ठीक है, वन, हाउसिंग कॉस्ट राइजिंग फास्टर देन इनकम, रेंट एंड होम प्राइजेस हैव इंक्रीज सिग्निफिकेंटली इन मेनी सिटीज, पीपल ऑन पेंशंस बेनिफिट्स और लो वेजेस कैन स्ट्रगल टू कीप अप, राइट। शॉर्टेज ऑफ अफोर्डेबल हाउसिंग, not enough low cost rental properties are available, even people with jobs may be unable to find housing they can afford. Cost of living pressure, high prices for food, electricity, fuel and insurance leave less money for rent. Unexpected life events जैसे कि job loss, illness, injury, divorce or the death of a partner can quickly lead to housing problems. Mental health and addiction issues, ये भी एक issue है दोस्तों। This can contribute to homelessness for some people, though most people experiencing homelessness are not homeless solely because of these issues. Family violence and relationship breakdown, many people, especially women and children, become homeless after leaving an unsafe home. Leaving unsafe home. याने छोड़ो। लिमिटेड सपोर्ट सर्विसेज, इन सम एरियाज देर आर नॉट इनफ शेल्टर्स, सोशल हाउसिंग यूनिट्स और सपोर्ट प्रोग्राम। ये ऑस्ट्रेलिया में भी हो रहा है दोस्तों, पीपल ये मामला यहां पर भी बहुत ताजा है। Casual and insecure employment can make it difficult for people to maintain stable housing. ठीक है, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। इन कंट्रीज सच एज ऑस्ट्रेलिया, हाउसिंग अफोर्डेबिलिटी एंड रेंटल शॉर्टेजेस आर वाइडली कंसीडर्ड मेजर ड्राइवर्स ऑफ द रीसेंट इंक्रीज इन होमलेसनेस। मेंटल हेल्थ, एडिक्शन एंड पर्सनल क्राइसिस रिमेन इंपॉर्टेंट फैक्टर्स फॉर सम इंडिविजुअल्स, बट दे डू नॉट एक्सप्लेन द ओवरऑल राइज ऑन देयर ओन। One important point, many homeless people are not sleeping rough on the street. Some are living in cars, staying temporarily with friends or relatives, or moving between temporary accommodations. This form of homelessness are often less visible but quite common. तो चलिए दोस्तों, एक बहुत बड़ा समस्या बना हुआ है। खैर चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और प्रीतम और आतिफ असलम से इस गीत को आप सुनेंगे, यानी प्रीतम का म्यूजिक है।

शायद ट्यूबलाइट का गाना था दोस्तों। और चलिए आप लोग कोशिश कर रहे हैं, आंसर्स भेज रहे हैं। एक और आंसर आया मेरे पास, बहुत मिलता जुलता है जो क्वेश्चन मैंने किया था, लेकिन ये जो गाना आपने भेजा है काफी, जैसे मैंने कहा, मिलता है। आप ये गाना में कह रहे हैं कि मैंने तो सिर्फ प्यार मांगा था तुम्हारा सितम और जुदाई नहीं, तो कौन सा गीत है बताइए दोस्तों। अच्छा बताइए नहीं, ये मेरा क्विज नहीं था, क्विज इसी से मिलता जुलता है, लेकिन जो गाना मैं ढूंढ रहा हूं वो गाना ये नहीं है दोस्तों, लेकिन चलो फिर भी प्यारा गाना है। तेरी जुल्फों से जुदाई तो नहीं मांगी थी।

0: ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: Yes baby, but no compromise with quality and health. हम जाएंगे सिर्फ MC's Indian and Island Food.
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, quality spices, lentils, rice, flour और frozen सब्जी from Fijian India. Brisbane के best Indian butcher supplying farm fresh goat, lamb, chicken and duck और fresh local produce भी रखते हैं. साथ ही kitchenware and disposable plates की large range किसी भी function के लिए.
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो.
1: MC's Indian and Island Food, serving Brisbane since 1999. Open 7 days. Find us on Facebook or visit website mcsfoods.com.au. 1/268 Kingston Road, Slacks Creek, phone number 3804-3818. That's 3804-3818.
2: Earn money from your empty drink containers with Containers for Change. Your empty eligible cans, bottles and cartons receive a 10 cents refund each. We call it Bincoin. Save, spend or donate your Bincoin to a cause you support. There's a Containers for Change near you. Bank it, don't bin it. Visit the website to find your nearest refund point and start trading for 10 cents today.
3: और दोस्त, अगर आज आपका जन्मदिन है तो हैप्पी हैप्पी वाला बर्थडे आपको विश कर रहे हैं, और अगर वेडिंग एनिवर्सरी है तो चलो हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी. किसी तरह का एनिवर्सरी आप मना रहे हैं तो चलो आपका दिन अच्छी तरह से बीते और हैव अ लवली डे. हाँ, हैव अ सेफ डे. चलिए इस बार क्या नाम है भाई, बड़ा कठिन नाम है, किरकिरे. जी हाँ, इनसे सुनेंगे इस गीत को दोस्तों.

बड़ा यूनिक सा गीत था दोस्तों, उम्मीद है आपको भी पसंद आया होगा गीत। और चलो, मैंने आप लोगों से पूछा था कि एक आशिक अपनी महबूबा से कहता है, मैंने सिर्फ प्यार मांगा था, मुझे मना मत करो। तो बताइए कौन सा गीत। वॉज अ गुड ट्राई, लेकिन वो गीत नहीं था जो मैं चाहता था। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, रेडियो बिजवानी आप सुन रहे हैं, और एक रिक्वेस्ट है नीले गगन के तले।

और दोस्तों अगला जो गीत है इसे गाए हैं अरिजीत सिंह ने, और इस गीत को इन्होंने गाया था सिटी लाइट्स मूवी के लिए, ठीक है, आई थिंक 2014 का गाना है दोस्तों, और म्यूजिक को कंपोज किया था जीत गंगुली और लिरिक्स को लिखा था रश्मि सिंह। तो चलो गीत कौन सा, मुस्कुराने, चलो

जी हाँ दोस्तों, मुस्कुराने की वजह तुम हो। वाह क्या बात। देखिए दोस्तों, अराउंड 100 डायनासोर एग्स डिस्कवर इन फ्रांस। साइंटिस्ट हैव अनकवर्ड अबाउट 100 फॉसिलाइज्ड डायनासोर एग्स एस्टिमेटेड टू बी 72 मिलियन ईयर्स ओल्ड। द एग्स आर बिलीव टू बिलोंग टू जायंट टाइटेनोसोरस, सम ऑफ द लार्जेस्ट एनिमल्स एवर टू वॉक ऑन द प्लेनेट। सोचिए दोस्तों, 72 मिलियन ईयर्स अगो। और हाँ, साथ में एक नया ऑक्टोपस पाया गया है दोस्तों, न्यू ब्लू ऑक्टोपस, एक कला ब्लू है। स्पीशीज फाउंड नियर द गैलापागोस। रिसर्चर्स हैव ऑफिशियली आइडेंटिफाइड अ टाइनी ब्लू ऑक्टोपस अबाउट द साइज ऑफ अ गोल्फ बॉल एज अ completely new species after it was found nearly 6,000 feet below the ocean surface. Abhi bahut se zyada mysteries hai dosto duniya mein aur hame pata hi nahi hai. Are abhi hame khud apne aap ke bare mein pata nahi hai dosto, hai ki nahi? Yes, that's for sure. Bahut kuch nahi pata hai, kahan jana hai ye bhi nahi pata hai. Ji haan, number hai 04300317 01.

ओके दोस्तों, आपको याद दिला दूं कि इस कार्यक्रम के बाद में आप भूलना मत, आप हो जाएंगे शताक्षी के साथ 11 बजे से पंजाबी प्रोग्राम रहेगा और फिर 3 बजे से निविया के साथ आप सुनेंगे प्रोग्राम, तो जरूर सुनिएगा, ठीक है। और एक राइट आंसर आया है प्रमद जी, आपका आंसर राइट है और कोशिश कीजिए प्लीज। आई वंडर वेयर विन इज गॉट टुडे। खैर चलो, आपका स्वागत है दोस्तों रेडियो बिजवाड़ी पर। जी हाँ, तुम अगर साथ देने की वादा करो, सुनील दत्त और विमी, एक रोमांटिक गाना।

तो इस गीत में यही कह रहा है कि बस तुम ये वादा करो कि हर हाल में मेरा साथ दोगी। जी हाँ, तुम अगर साथ देने की वादा करो, दुख हो सुख हो चाहे कुछ हो, साथ देने की वादा करो। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और अगला जो गीत है, देखो फटाफट टेक्स्ट आ रहे हैं मेरे पास। आज आप लोग बहुत सब बहुत एक्टिव हो, क्या बात है, अच्छी बात है। जी हाँ, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है रेडियो बिजवानी पर, और जितने भी दूर दूर से लोग इंटरनेट से सुन रहे हैं, वाओ वेलकम।

जी हाँ दोस्तों, बहुत ही फीलिंग के साथ अरिजीत सिंह ने इस गीत को गाया है। ठीक चोर से गाना है ये, और पूछ रहे हैं कि आप बहुत दूर हो, आप ठीक हो ना। अच्छा लगा सुनकर, शायद आपको भी अच्छा लगा दोस्तों। तो चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं दोस्तों। लता मंगेशकर और एसपी बाला सुब्रमण्यम, इन दोनों से आप सुनेंगे आते जाते हस्त।

बड़ा प्यारा सा गीत था दोस्तों, और अच्छा लगा। उम्मीद है जो आज गीत मैं बजा रहा हूँ आप सबको अच्छा लग रहा है। दोस्तों देखिए, द यूके रिकॉर्डेड इज हॉटेस्ट मई टेम्परेचर एवर, रीचिंग ओवर 35 डिग्री सेंटीग्रेड एंड अनयूजुअली हाई टेम्परेचर फॉर स्प्रिंग एंड अ साइन ऑफ इंक्रीजिंगली एक्सट्रीम वेदर पैटर्न्स। और जैसे मैंने कहा था दोस्तों, मुझे लग रहा है कि हमारा जो विंटर यहाँ होगा काफी बुरा जाएगा विंटर। दोस्तों तैयार हो जाइए। जी हाँ, चलो इस गीत के लिए तैयार हो जाइए। रफी साहब की आवाज में आप सुनेंगे आप तो ऐसे ना थे का गाना।

अरे देखिए दोस्तों, मैंने पूछा था, क्विज था आज, एक आशिक अपने महबूबा से कहता है, मैंने सिर्फ प्यार मांगा था, मुझे मना मत करो। तो दोस्तों बताइए किस मशहूर गाने की लाइन है, आप बता तो सकते हैं। आंसर मैं कल दूंगा, ठीक है, कल फिजी न्यूज के बाद में आई गिव यू द आंसर, बिकॉज बहुत से लोग हैं जो शायद अभी नहीं सुन रहे होंगे, काम पे चले गए होंगे, ठीक है। सो स्टिक अराउंड टिल टुमारो, आई गिव यू द आंसर। अभी तक एक ही आंसर आया है दोस्तों।

और देखिए दोस्तों, जैसे मैंने कहा था, इसमें एक म्यूजिक है। जैसे हम और एमी बहुत सालों से प्रोग्राम करते आए हैं दोस्तों, बहुत ज़्यादा यूज्ड है, और जब मैं कुछ कहता हूँ तो समझ जाती है कि मैं क्या कहना चाहूँगा और कौन सा गीत सुनना चाहूँगा, तुरंत फटाफट वो गीत निकाल देती है दोस्तों। दैट पार्ट आई रियली मिस अबाउट है, और गाना के जो जानकारी उनके पास बहुत है। और जैसे गीत अभी मैंने कहा था, जो म्यूज़िक मुझे आ नहीं रहा है, लेकिन आपको शायद मालूम होगा। चलिए अगला जो गीत है दोस्तों, ये जब कोई नए फर्स्ट टाइम लवर होते हैं, फर्स्ट टाइम जब प्यार करते हैं तो क्या होता होगा? मुझे तो भाई बहुत दिल हो गया, आई डोंट नो, शायद एक्साइटमेंट होता होगा, शायद इनोसेंस होता होगा, शायद स्ट्रॉन्ग इमोशंस होता होगा, आई डोंट नो, शायद आपको मालूम होगा ज़्यादा। चलिए सुनते हैं लेकिन गीत को, बड़ा प्यारा सा गीत है, SP बालासुब्रमण्यम की आवाज़ में गीत मैंने प्यार किया मूवी से।

और देखिए दोस्तों, एक स्पीशीज, न्यू बग स्पीशीज फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया, प्रीवियसली अननोन इंसेक्ट स्पीशीज वॉज डिस्कवर्ड नियर डार्विन. इट अट्रैक्ट्स एंट्स विद अ स्पेशल सिक्रीशन बिफोर कैप्चरिंग देम, ए हंटिंग स्ट्रेटजी दैट सरप्राइज रिसर्चर्स. कैन यू बिलीव दैट? तो सोचिए दोस्तों, क्या बात है. चले किशोर कुमार से इस गीत को सुनेंगे दोस्तों. आज गीत है साथी रे तेरे बिना भी.

जी हाँ हो साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना, क्या बात है दोस्तों। ये प्यार की बातचीत इसमें है। देखिए, द ब्रेन यूजेस लेस एनर्जी देन यू थिंक, इवन दो द ब्रेन इज ओनली अबाउट 2% ऑफ बॉडी वेट, इट यूजेस अराउंड 20% ऑफ योर बॉडीज एनर्जी एवरी डे। That's why mental fatigue is real. Your brain is literally working like a high power engine. ठीक है, तो ब्रेन को भी आपको सही रखना है। और फिर चलते हैं, बात करते हैं माइल्ड डिहाइड्रेशन, इसके इफेक्ट्स क्या होता है मूड पर। जी हाँ, इवन 1-2% डिहाइड्रेशन कैन कॉज हेडेक्स, टायर्डनेस, इरिटेबिलिटी। सो समटाइम्स लो मूड, जी हाँ समटाइम्स लो मूड इज जस्ट लो वाटर। ठीक है, और योर हार्ट बीट्स ओवर 100,000 टाइम्स अ डे। कभी सोचा इस बात को आपने दोस्तों? कैलकुलेशन कर ले आप। ऑन एवरेज द हार्ट बीट्स 100,000 टाइम्स अ डे, ओवर 2.5 बिलियन टाइम्स इन अ लाइफ टाइम। व्हाट अ इनक्रेडिबल मशीन दैट इज, है कि नहीं? सोचने वाली बात है दोस्तों। जी हाँ, तो चले कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और अगला गीत सुनते हैं दोस्तों। नंबर है 04300031701।

और देखिए दोस्तों, कुछ हेल्थ पर हम बातें कर रहे हैं, और अगर आप स्नोरिंग बहुत ज्यादा करते हो दोस्तों, आप सोच रहे हैं कि आप सो रहे हैं लेकिन जो डीप स्लीप स्टेट है उसमें आप नहीं जा पा रहे हैं, प्लीज डू गेट योरसेल्फ टेस्टेड। अगर आप ऐसे नहीं करेंगे तो हो सकता है कि आपको डिमेंशिया वगैरह हो सकता है। मैं डराने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, क्योंकि क्या होता है दोस्तों, जब हम डीप स्लीप में जाते हैं राइट, तो ये एक तरह का क्लीनिंग सिस्टम शुरू हो जाता है जो हमारे वॉइस प्रोटीन्स है उसको निकालता है। जब ऐसे होता है दोस्तों, तो हमारा जो गुड स्लीप है हमारा मेमोरी को हेल्प करता है और रिड्यूसेस ब्रेन फॉग। तो अगर आप कभी कभी फील कर रहे हैं कि आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं दोस्तों, और आपने रात भर सोया है, यू हैवन रीच द स्टेट ऑफ स्लीप, तो डू गेट योर सेल्फ स्लीप ओपनिया के लिए आप टेस्ट कर ले, ठीक है? तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और देखिए, जो ह्यूमन बोन्स इज स्ट्रॉन्गर देन स्टील ऑफ द सेम वेट, अ मैच बॉक्स साइज पीस ऑफ बोन कैन कैरी ओवर 9 tons ऑफ वेट। क्या बात है भाई। तो चलो, और यो जो हमारे आंख है, यू ब्लिंक अबाउट 15 to 20 times पे मिनट, एंड ईच ब्लिंक जो एक बार आप ब्लिंक करते हैं लास्ट ओनली 0.1 to 0.4 seconds। इतना फास्ट होता है दोस्तों। और क्यों हम ब्लिंक करते हैं? इट प्रोटेक्ट्स योर आईज लाइक अ नेचुरल विंडशील्ड वाइपर। तो भगवान ने क्या बनाया हमको, देखो विंडशील्ड वाइपर भी दिया है, क्या बात है। तो चलिए सुनते हैं इस गीत को, और इस समय 33 मिनट हो गए हैं 8:00।

0: कैसा?
1: अरे दोस्तों, अपना जो गीत है ये आंखों पर है, और ये जो गीत है इसमें आंख थोड़ा शर्मा भी रही है, डरी हुई है, यानी कि आंखें शर्मा भी रही है और डरी हुई है, और दिल का जो हाल है ना, दिल का हाल भी बता रही है। दोस्तों देखो, डर रही है, शर्मा रही है, फिर भी दिल का जो हाल है बता रही है। ये तो शायद क्विज होना चाहिए था, लेकिन ये गाना मुझे सुनना है दोस्तों। आई लव दिस सॉन्ग, उम्मीद है आप भी पसंद करोगे दोस्तों।

देखिए किस तरह से हम अपना डिस्क्रिप्शन देते हैं या प्यार जताते हैं जैसे कि खुदा भी आसमां से देखता होगा तो क्या सोचता होगा। जी हाँ, व्हाट अ लिरिक्स, क्या लिखते थे लोग। जी हाँ दोस्तों, आजकल ये सब शायद नहीं होता है दोस्तों। चलिए, 9:15 बज गया है।

टाइम अपना दिया, बहुत अच्छा लग रहा है। और चलिए जो आखिरी गीत है दोस्तों, ये है कभी कभी हम सपना देखते हैं दोस्तों, और अगर उसी तरह का कोई रियल पर्सन मिल जाए और प्यार हो जाए, सपना और प्यार दोनों अगर मिल जाए साथ में मिक्स हो जाए तो उसका मजा क्या होता है दोस्तों, है कि नहीं। तो चलो इसी गीत के साथ हम आपको छोड़ रहे हैं, और थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल दोज ब्यूटिफुल कॉल्स और मैसेजेस जो आपने भेजे हैं, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज कीप लिसनिंग टू रेडियो बिजवानी, बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम अभी आपको सुनने को मिलेगा। ठीक है, मिलेंगे कल दोस्तों, कल पुराने गीत है ऑल द वे। ठीक है, नमस्कार, खुदा हाफिज़। जी हाँ, सिलसिला का गाना देखा एक ख्वाब।

0: सुप्रभात, गुड मॉर्निंग दोस्तों। सुबह की पहली किरण के साथ इट हैपेंस में एक बार फिर से सताक्षी करती है आपका वेलकम। आज का दिन फिर से एक नया मौका है एक नई शुरुआत करने का, क्योंकि वो कहते हैं ना, सुबह का एक पॉजिटिव थॉट पूरे दिन का मूड सेट कर देता है। तो आज का थॉट सुन लेते हैं सबसे पहले, जो मेरे मन में आपसे बात करते करते आया है। जिंदगी वही है जो हम हर सुबह डिसाइड करते हैं, चाहे तो मुस्कुरा के शुरू करें और चाहे शिकायत के साथ। और हाँ, अलार्म को बंद करने से पहले याद रखिएगा कि अलार्म को बंद करना एक जादू है, सुबह का जादू। और वो जो 5 मिनट होते हैं ना, उन 5 मिनट का जादू कभी खत्म नहीं होता। इसलिए उठ जाइए और एक बढ़िया से मोटिवेशनल सॉन्ग के साथ चलिए शुरुआत करते हैं आज के इट हैपेंस की रेडियो प्रसारणी 1701 AM पर।
1: भूख लगी जोरों की भूख लगी, मुर्गे की बांग हमें कोयल की भूख लगी।

गुड मॉर्निंग रेडियो प्रसवानी पर आप सुन रहे हैं सताक्षी के साथ इट हैपेंस में आज एक बार फिर से आपके साथ होंगी और हो रही हैं ढेर सारी बातें, लेकिन इन बातों के आगे सफर को लेकर चलने से पहले ये वक्त है उनको खास तौर से हमारे शो में शामिल करने का और उन्हें बधाइयां देने का आज के दिन के लिए जो बहुत स्पेशल है आज। सो जन्मदिन की ढेरों ढेर शुभकामनाएं एंड आई विश कि आपका बर्थडे जो है वो सबसे बेहतरीन दिन हो आपके लिए आज का, और जिंदगी जो है वो नई ओर चल निकलेगी आज से। हर बर्थडे हमारी जिंदगी का एक नया आगाज होता है, तो आप यूं ही जिंदगी पर हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और जिंदगी के सही ट्रैक को पकड़कर चलें। इसी विश के साथ विश करते हैं उन्हें भी जिनके लिए ये पल बहुत ही स्पेशल है क्योंकि आज है उनकी वेडिंग एनिवर्सरी। तो वेडिंग एनिवर्सरी की बहुत शुभकामनाएं आपको, और जिंदगी में अगर कोई एक ऐसा साथ हो, क्योंकि जिंदगी किसी की भी आसान नहीं होती है, लेकिन कोई अगर ऐसा साथ हो जो हर छोटी बड़ी खुशी में आपका साथ निभाए, हर तकलीफ में आपके साथ रहे, तो बस जिंदगी में और क्या चाहिए। वो जिनके लिए आज का दिन है स्पेशल और खास, उन सभी को ऑल द वेरी बेस्ट। आप सबके नाम प्ले करती हूँ ये अगला ट्रैक। स्टे ट्यून्ड रेडियो ब्रसवानी, मुझे सुनते रहिए इट हैपेंस में और सुनते रहिए ये सुबह के मॉर्निंग नंबर्स।

0: Excuse me, may I? Some matches are made in heaven and some are made at weddings. Every wedding is special. Think weddings, think Roy Singh. From the grand ballroom to your childhood backyard to a faraway beach, the big day comes in all sizes and styles, and that is why I'm proud that you have trusted me with your civil wedding, and I cannot wait to help you create yours. Contact me, Roy Singh, today on 0411-022-602, 0411-022-602, or email me at royleendrasingh@gmail.com. Think weddings, think Roy Singh.
1: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660।

0: सो वेलकम बैक, इट हैपेंस। एंजॉय कर रहे हैं आप, सताक्षी आपके साथ है और मेरी और आपकी कुछ खास और बेहतरीन बातों का ये सफर जो है ये आगे चल रहा है। अच्छे लोग ना बहुत अच्छे होते हैं और वो हमेशा दूसरों के लिए अवेलेबल रहते हैं, हमेशा दूसरों को हाँ कहते हैं, ना कहना उन्हें आता नहीं है। बट यू नो, जैसे जैसे वक्त बीतता है, अगर आप भी अच्छे लोगों में से हैं तो आप ये समझ पाएंगे कि वो इंसान जो है धीरे धीरे समझ जाता है कि भाई अच्छा होना आज के टाइम पे किसी गुनाह से तो कम नहीं है, है ना। क्योंकि जितना आप लोगों के लिए हमेशा अवेलेबल रहते हैं, हमेशा उनका अच्छा सोचते हैं, उतना ज्यादा लोग आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, आपको बेवकूफ समझते हैं। और फिर वो अच्छा इंसान भी एक लिमिट के बाद जाकर बदल जाता है, क्योंकि जहां आपकी अच्छाइयां अगर आप पे भारी पड़ने लगे तो लगता है कि यार इतना अच्छे होके भी क्या फायदा, है ना। अगर हम अच्छे हैं तो हमें क्यों खुद को हमेशा प्रूफ करना पड़े कि हम अच्छे हैं, क्यों अपनी हर एक बात को एक्सप्लेन करना पड़े। और वो इंसान भी फिर एक लिमिट के बाद बदलता है, इसलिए नहीं कि वो बुरा इंसान बनना चाहता है, बल्कि इसलिए कि वो अपनी अच्छाई को प्रोटेक्ट कर सके। यूं ही किसी पर अपनी अच्छाई को, अपने इमोशंस को खर्च ना करता घूमे जैसे वो आज तक करता आया है। यस, बहुत सोच समझ के अपने इमोशंस और अपनी अच्छाई दूसरों को दिखाइए। आइए आगे चलते हैं, आपको लेकर एक और ट्रैक सुनिए हमारे साथ और यूं ही सुनते रहिए इट हैपेंस सिर्फ और सिर्फ आपके अपने रेडियो ब्रिस्वानी पर।
1: अला रे अला सिम्बा अला।

वेलकम बैक. इट हैपेंस. सुन रहे हैं आप सताक्षी के साथ रेडियो प्रस्वानी 1701 एम पर. यू नो, हर बार अगर आपकी बात से इंसान चुप हो जाता है या चुप रहता है, तो हर बार चुप रहने वाला इंसान ना तो गलत होता है और ना ही कमजोर होता है. वो ये समझ जाता है कि यार हर एक बात को एक्सप्लेन करने का कोई मतलब नहीं है. वो लोग जो बार बार एक्सप्लेनेशन चाहते हैं, एक्चुअली वो सही बात सुनने के काबिल ही नहीं है, या उनको सही बात अगर आप कह देंगे तो भी वो उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे. वो उसमें भी कोई ना कोई कमियां ढूंढ लेंगे. और इसलिए जब आप बहुत बार चीजों को एक्सप्लेन कर चुके हैं ना, तो फिर आप ये ठान लेते हैं कि यार अब बस है ना, आई एम डन, और अब मुझे किसी को कुछ एक्सप्लेन करना ही नहीं है. और वहां पर आप हर आर्ग्यूमेंट से बचने के लिए, हर सवाल से बचने के लिए खामोशी ओढ़ लेते हैं. तो ऐसा नहीं है कि आप जवाब नहीं दे सकते, आप कमजोर हैं या फिर आप गलत हैं. नहीं, आपको पता है कि जवाब देने का भी कोई मतलब नहीं है, और इसलिए साइलेंस जो है वो आपका बेस्ट फ्रेंड बन जाए तो ही बेहतर है. ऐसे लोगों के नाम जिन्होंने अपने आर्ग्यूमेंट्स के ऊपर अपनी चुप्पी को चुन लिया है, उनके नाम है ये अगला ट्रैक. इसे सुनिए और मेरे साथ सुनते रहिए. इट हैपेंस आपके अपने रेडियो प्रस्वानी 1701 एम पर.

0: नहीं, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाली शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।
2: तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन, तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो, जां 132 ANT यानी के 132-268 उते कॉल करो। ए सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है। ऑथराइज्ड बाय द
3: क्वींसलैंड के साथ आप सुन रहे हैं आपका अपना ब्रेकफास्ट शो इट हैपेंस। आइए बढ़ते हैं गानों के हैट्रिक की ओर। जी हाँ, 3 बैक टू बैक ट्रैक्स एक बार फिर से आपके लिए लेकर आई है सताक्षी। और ये गाने जो है ये एक बार फिर से सदाबहार गाने हैं, बॉलीवुड के वो गाने हैं, हमारे वो मॉर्निंग ट्रैक्स हैं जिन्हें आप हमेशा सुनना पसंद करते हैं। सो स्टे ट्यून्ड, रेडियो ब्रिस्बेन, हमारे साथ सुनते रहिए गानों के हैट्रिक। ये पहला ट्रैक है आपके लिए।

तीन बैक टू बैक ट्रैक्स का हमारा सफर गानों की हैट्रिक इस वक्त आप एंजॉय कर रहे हैं सताक्षी के साथ। गानों की हैट्रिक का ये लास्ट ट्रैक और इसके बाद होंगी ढेर सारी बातें आपके अपने ब्रेकफास्ट शो इट हैपेंस में। चलिए आगे बढ़ते हैं और एंजॉय करते हैं अभी गानों की हैट्रिक का ये तीसरा ट्रैक।

0: Earn money from your empty drink containers with Containers for Change. Your empty eligible cans, bottles and cartons receive a 10 cents refund each. We call it Bincoin. Save, spend or donate your Bincoin to a cause you support. There's a Containers for Change near you. Bank it, don't bin it. Visit the website to find your nearest refund point and start trading
1: Containers for Change
0: के माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धनराशि कमाएं। आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है। इसे हम बिनकॉइन कहते हैं। अपने बिनकॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स और चेंज मौजूद है, बैंक में डालें ना कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें।

वेलकम बैक, आप सताक्षी के साथ हैं और मेरे साथ एंजॉय कर रहे हैं आपका ब्रेकफास्ट शो इट हैपेंस। यू नो, सबके लिए करते करते, सबके लिए अवेलेबल होते होते हम खुद के लिए जीना अक्सर भूल जाते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी खुद के अपने लिए है और दूसरों पर खर्च होते रहते हैं। हम इमोशन से, फीलिंग से हम उन्हें सिर्फ देते रहते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि जिस दिन हमने खुद को खो दिया उस दिन कोई हमें ढूंढने नहीं आने वाला, कोई हमारे लिए अवेलेबल नहीं रहने वाला, कोई हमारे लिए कुछ नहीं करने वाला। इवन अगर आप एक पूरे दिन ना मुस्कुराएं तो आप खुद देखिए कि लोग आपको हंसाने की कोशिश भी नहीं करेंगे। आप किसी के लिए कितना भी कर लीजिए, लोग आपसे खुश नहीं होने वाले। आप उन्हें खुश करने की कितनी भी कोशिश कर लें, वो खुश नहीं होंगे। इवन ज्यादा आप कोशिश करने जाएंगे ना तो आपसे ज्यादा इरिटेट होंगे। उन्हें लगेगा कि आप उनको अटेंशन नहीं दे रहे हैं, आप उनको प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं। या वो ये भी सोच सकते हैं कि भाई इसकी तो अटेंशन मेरे लिए है ही, क्या इस पर ध्यान देना है, है ना। इसलिए खुद की सेल्फ वर्थ को पहचानिए, खुद को, आपको जो अपने लिए वक्त चाहिए वो आप खुद को दीजिए। अदरवाइज आप लाइफ में बहुत पीछे रह जाएंगे और लोग आपकी ही फीलिंग्स को सहारा बना के आगे निकल जाएंगे। सर बने रहिए सताक्षी के साथ और सुनते रहिए इट हैपेंस। जी हाँ, ऐसी और भी बहुत सारी बातें जो भी आपके साथ होंगी, लेकिन इस अगले ट्रैक के उस पार। कीप लिसनिंग टू रेडियो ब्रिस्वानी।

कई बार हम देखते हैं कि एक इंसान पहले तो खूब बात करता था, फिर अचानक से वो चुप हो जाता है, मौन हो जाता है। इस संस्कृत का जो शब्द है ना मौन, ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है। ये कहता है कि मौन का मतलब हमेशा ईगो नहीं होता है। मौन का मतलब ये है कि इंसान कुछ बातें ना दूसरों से तो छुपाता ही है, वो खुद से भी उस बारे में बात करना नहीं चाहता। ये वो वक्त होता है एक इंसान की लाइफ में जब उसके अंदर बहुत कुछ चल रहा है, बट वो किसी के साथ वो सारी चीजें बता नहीं पाता है, वो शेयर नहीं कर पाता, और इसलिए वो चुप्पी को अपना हथियार बना लेता और वो मौन अवस्था में आ जाता है, चुप हो जाता है। सो चुप्पी जो है वो हमेशा ईगो नहीं है कि इंसान आपसे बात नहीं करना चाहता, नहीं, उसके अंदर एक ऐसा समंदर है जिसे वो शायद आपको नहीं चाहता कि आप उसे फील करें, या वो शायद ये भी नहीं चाहता कि वो खुद भी बार बार उस इमोशन से होकर गुजरे, इसलिए वो चुप्पी को पकड़ लेता है, धारण कर लेता है और चुप हो जाता है। एक और ट्रैक उन लोगों के नाम जो दूसरों से लड़ लड़के, अपने आप से लड़ लड़के, अपने इमोशन से लड़ लड़के थक चुके हैं और अब वो चुप हैं, उनके नाम ये अगला ट्रैक है। बने रहिए सदाक्षी के साथ और सुनते रहिए इट हैपेंस आपके अपने रेडियो प्रिस्वानी पर।